मिनीवेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में

0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्रशासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं धान की उन्नत प्रजातियां विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी।

0: किसान भाइयों, आज हम धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका बीज उन्नत किस्म का एवं प्रमाणित होने के साथ साथ अधिकतम पैदावार वाला होना चाहिए। धान की प्रजातियां वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन इन किस्मों की कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां क्षेत्रगत होती हैं, यानी जो प्रजाति जिस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो उसे उसी क्षेत्र में ही बोना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में लगाने से उसकी सही पैदावार नहीं मिल पाती है। कुछ प्रजातियों का विकास मिट्टी की दशा के अनुसार किया जाता है, जैसे ऊसर के लिए विकसित प्रजातियां या जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए संस्तुत प्रजातियां। ऊसर मिट्टी में खेती करने के लिए धान की जो प्रजातियां स्वीकृत हैं वे ऊसर मिट्टी में ही ज़्यादा पैदावार देती हैं। अन्य मिट्टियों में इनकी पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है। इसी तरह जलमग्न क्षेत्रों के लिए अलग से प्रजातियां स्वीकृत हैं, जिनकी खेती इस तरह के क्षेत्रों में ही करनी चाहिए। धान की कुछ ऐसी भी प्रजातियां स्वीकृत हैं जो कि सुगंधित होती हैं। धान की प्रजातियों का चयन करते समय एक बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, वह है इसका समय। धान की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि जल्दी तैयार होती हैं। इन किस्मों के पकने में 100 से 120 दिन का समय लगता है। कुछ किस्में देर से पकने वाली होती हैं, यानी इनके पकने में 120 से 140 दिन का समय लगता है। इसके अलावा कुछ धान की प्रजातियां काफ़ी देर से पकती हैं, अतः जिन प्रजातियों को तैयार होने में लंबा समय लगता है उनकी रोपाई थोड़ा पहले करनी चाहिए ताकि उसे तैयार होने में पर्याप्त समय मिल सके। जो प्रजातियां जल्दी तैयार होती हैं उन्हें अपेक्षाकृत देर से रोपना चाहिए। ये तो कुछ बातें रहीं प्रजातियों के चुनाव से संबंधित। अब इन प्रजातियों की चर्चा। प्रदेश में धान की खेती दो दशाओं में करते हैं, असिंचित दशा यानी जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं यानी वर्षा पर आश्रित खेती, दूसरी सिंचित दशा है यानी जहाँ पानी के साधन उपलब्ध हैं। असिंचित दशा में अगर धान की खेती बुआई करके करना चाहते हैं तो नरेंद्र 97, नरेंद्र 118 और गोविंद प्रजातियों में से चुनाव करना चाहिए। अगर रोपाई करना चाहते हैं तो साकेत 4, नरेंद्र 118 और गोविंद प्रजातियों की नर्सरी डालें। बात आती है सिंचित दशा की। ऐसे क्षेत्रों के लिए शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें नरेंद्र 80, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97 प्रजातियां हैं। मध्य देर से यानी कि 120 से 140 दिन में तैयार होने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं मालवीय 2-1, मालवीय 4-3, नरेंद्र 359, प्रो एग्रो 6444, IR 36, सरजू 52, सीता और पंत धान 4। जो प्रजातियां पकने में 140 दिन से भी अधिक समय लेती हैं वह हैं क्रॉस 116, टाइप 100, टाइप 9, टाइप 23, मसूरी, साभा मसूरी यानी BPT 5204, MTU 7029, सवाड़ा और MTU 1001। धान की सुगंधित किस्में भी हैं, जैसे टाइप 3, पूसा बासमती 1, बासमती 370, हरियाणा बासमती और तरावड़ी बासमती। इसके अलावा सुगंध 3, ये सब प्रजातियां हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं। अगर ऊसर जमीन है तो ऐसे क्षेत्रों में नरेंद्र ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, CSR 10, CSR 13, CSR 30 प्रजातियों को बो सकते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार धान की प्रजातियों का चुनाव करें और फिर उनकी खेती करें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धान की उन्नत प्रजातियां विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जिनके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में हर धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, पवन पुत्र मंगल मूर्ति वो हनुमान है।

अत्यंत सुगम रास्ता है सिर्फ प्रभु का। संतन के संगत में मन को शांति और प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे हरिओम शरण, महेंद्र

0: कपूर, विदुषी गिरिजा देवी और कैलाश श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: आदमी ने अब तक कोल्हू के बैल जैसी ही जिंदगी जी है। आंखों के आगे पट्टी लगाकर वो अंधेरे में ही चक्कर लगाता आया है। एक ऐसा चक्कर जिसमें से बाहर निकलने के लिए उसे एक नई दृष्टि और एक महत् प्रयत्न की जरूरत है। धर्मों का ये ताना बाना एक काली और मोटी पट्टी के रूप में आदमी की आंखों की रोशनी गुल करता आ रहा है। ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये उसका भगवान, ये तेरा मंदिर, ये मेरा गिरजा, ये उसका गुरुद्वारा। भवन, झंडे, धार्मिक किताबें और कर्म कांड के ताबूतों में ईश्वर को बंद कर दिया गया है। इन जगमग तथा कथित पवित्र स्थानों से जो आवाजें आती रही हैं, वो इबादत की ना होकर लालच, स्वार्थ और शोषण की ही रही हैं। इतिहास साक्षी है कि अधिकांश तथा कथित धर्म के ठेकेदार, पथ प्रदर्शक कभी नहीं बन पाए। उन्होंने रूहानी सत्यों को तोड़ मरोड़ कर ही प्रस्तुत किया है। सामने बहती जीती जागती जिंदगी को छाया माया कहकर सपनों की केवल पैरवी की है। 20वीं सदी में तो धर्म एक बहुराष्ट्रीय उद्योग संस्थान बन गया है। आधुनिक प्रचार माध्यमों के बलबूते पर रंग बिरंगे सपने बेचने वाला उद्योग। आदमी की आंखों पर दूसरी पट्टी बांधी है विज्ञान ने। पिछले कुछ शतकों में विज्ञान सोने की चकमक जंजीर के रूप में ही उभरा है। सत्य सिर्फ वही है जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, ये कहकर विज्ञान ने एक भोग उपभोग से सराबोर संस्कृति को

0: उन्होंने रूहानी सत्यों को तोड़ मरोड़ कर ही प्रस्तुत किया है। सामने बहती जीती जागती जिंदगी को छाया माया कहकर सपनों की केवल पैरवी की है। 20वीं सदी में तो धर्म एक बहुराष्ट्रीय उद्योग संस्थान बन गया है। आधुनिक प्रचार माध्यमों के बलबूते पर रंग बिरंगे सपने बेचने वाला उद्योग। आदमी की आंखों पर दूसरी पट्टी बांधी है विज्ञान ने। पिछले कुछ शतकों में विज्ञान सोने की चकमक जंजीर के रूप में ही उभरा है। सत्य सिर्फ वही है जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, ये कहकर विज्ञान ने एक भोग उपभोग से सराबोर संस्कृति को ही जन्म दिया है। नतीजा सिर्फ इतना ही मिला है कि आदमी हिरोशिमा और नागासाकी के दिल दहलाने वाले परमाणु विस्फोट से लेकर अंतरिक्ष में कल्पित सितारों के बीच की प्रलयंकारी लड़ाई तक ही चल पाया है। परखनली की संतानी और जीन यांत्रिकी जैसी विज्ञान की उभरती हुई संभावनाएं शायद मानवीय मूल्यों की परिभाषा ही बदल देंगे। धर्म की पकड़ तो ढीली पड़ी ही है, विज्ञान के सम्मोहन ने भी बुरी तरह ग्रसित कर लिया है। आदमी की तलाश उसके स्वयं के अस्तित्व के सत्य की तलाश है। ये सफर तब चालू होता है जब वो अपनी भाषा, नाम, संस्कृति, धर्म और विज्ञान के आधार पर की गई संकुचित परिभाषाओं से विद्रोह कर उठता है और चेतना की गहराइयों में डूब जाने का साहस जुटा पाता है। चेतना का ये नया सवेरा जो कि सनातन जिंदगी का प्रारंभ है, कभी भी कहीं भी और किसी में भी हो सकता है। जरूरत पूर्वाग्रहों से मुक्त और जो है उसे वैसा ही देख सकने वाले मन की है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हार्निया कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर प्रेम प्रकाश की ये जानकारी।
1: मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश, कंसल्टेंट सर्जन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वाराणसी। एक सर्जन होने के नाते आज आप लोगों के बीच में एक विषय पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। हार्निया एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो कि ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स। यदि इसको हम परिभाषित करने की चेष्टा करें तो हार्निया शरीर के किसी अंग के आंशिक रूप या पूर्णतया अपने आवरण के किसी कमजोर भाग से निकलना हो, इस परिस्थिति को हम आमतौर पे हर्निया कहते हैं। हर्निया को परिभाषित करने के बाद ये कितने तरह के होते हैं इस पे आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा। यह डिपेंड करता है कि यह उभार जो है वो शरीर के किस भाग में है। ज़्यादातर ग्रोइन एरिया में, पेट के निचले भाग में होता है, इसको हम लोग इंग्विनल हर्निया कहते हैं। नाभि के आसपास भी इस तरह के उभार देखने को मिलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। पेट के ऊपरी भाग में भी होती है इस तरीके के उभार देखने को मिलते हैं, इसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। कभी कभी पहले ऑपरेशन हो चुका होता है और वहाँ घाव के प्रॉपर वे में नहीं सूखने की वजह से भी एक हर्निया होता है, जिसको कि इंसिजनल हर्निया कहते हैं। हर्निया वैसे शरीर में कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, ब्रेन हर्निया कहते हैं, लंबर्ड हर्निया कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी किस एनाटोमिकल साइट पे उसकी लोकेशन है, हम हर्निया के प्रकार को विभाजित करते हैं। दूसरे तरफ की हर्निया कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। मरीज जब हमारे बीच में आता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं खांसता हूँ या हंसता हूँ तो मेरे पेट के किसी भाग में, चाहे नीचे या ऊपर या नाभि के चारों ओर, जहाँ पर भी हर्निया

0: वहाँ एक उभार सा दिखता है, जो कि मैं लेटता हूँ तो वो अपने आप स्वतः वो उभार गायब हो जाता है। तो इसको हम लोग अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कहते हैं। और दूसरे टाइप होते हैं कॉम्प्लिकेटेड हर्निया, जिसमें जो शरीर का वो अंग जो बाहर निकलता है वो किसी कारण से जाके फंस जाता है, जैसे आंत यदि बाहर निकलना तो आंत फंस गई तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हुआ, स्ट्रंगुलेटेड हर्निया हुआ, तो या इनकार्सरेटेड हर्निया, ये सारी वेराइटीज कॉम्प्लिकेटेड हर्निया की श्रेणी में आते हैं। अब हम प्रयास करेंगे इसके जानने का कि इसके कारण क्या है, किस कारण से हर्निया होते हैं। इसमें जो मुख्य कारण है वो मांसपेशियों का कमजोर होना। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में हर्निया नहीं होगा, बच्चों में भी हर्निया होता है। जो हमारी टेस्टिस होती है वो पेट में बनती है और अंत में स्क्रोटम में जा करके वो लैंड अप करती है, तो वो एक पोटेंशियल वीकनेस को छोड़ती हुई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में भी हर्निया देखने को मिलता है, कॉन्जेनाइटल हर्निया जिसको हम लोग कहते हैं। ओबेसिटी, मोटापा भी एक कारण है, क्योंकि जब फैट होते हैं जो मसल्स फाइबर्स के बीच में जब वो होते हैं तो वो भी अपने आप में एक तरह से पोटेंशियल वीकनेस क्रिएट करते हैं। जिस मरीज की पहले ऑपरेशन हो चुकी होती है, जो वहाँ धागे का इस्तेमाल होता है, यदि प्रॉपर वे में धागे का सिलेक्शन नहीं हो या प्रॉपर टेक्निक से उसकी सूचरिंग नहीं हुई हो, तो वहाँ भी एक तरह से जो मांसपेशियों में कमजोरी आती है, जिसके वजह से हर्निया हो सकता है, जिसको कि हम लोग इंसीजनल हर्निया कहते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हार्निया कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर प्रेम प्रकाश की जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी खाक बन जाएगी। कर दो अपनी आंखों का दान, किसी की जिंदगी संवर जाएगी। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से स्वयं मिलता है परमात्मा। जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को करे नेत्रदान। नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्रदान महादान, जो आपको बनाता है महान। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा कर

करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। खेल दर्पण कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10 बजे और सुबह 9:30 पर सुनेगा उर्दू कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सुने गए विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी सुबह 10 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन। दिन 12:45 पर सुबह 7:31 पर सुनेगा निर्मल सैनी का गिटार वादन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनेगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनूप जलोटा की गजलों का लुत्फ उठाएगा रात 8 बजे और दिन में 12:30 पर सुनेगा संचिता गोस्वामी के गाए भजन। रोजाना की तरह किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनेगा कृषि यंत्रों की देखभाल कैसे, इस विषय पर विनोद कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। साथ ही साथ सुनेगा तूफानी चौबे का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50

50 मिनट पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनेगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में होगी आज की बात, अलावा इसके अर्णव पांडे का सुनेगा काव्य पाठ, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना के साथ साथ होगा फिल्म संगीत। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा होगी, इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर अजय सिंह से सुनेगा शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, और साथ ही साथ होगा गीत संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में बुंदेली गीत सुनेगा शाम 5 बजे से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रसमाधुरी सुनेगा रात 8:15 पर। रसरंग शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत शाम 6:10 पर। ओल्ड इज गोल्ड सुहाने तराने सुनेगा दिन में 2:30 पर। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनेगा दिन में 11 बजे, और मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से सुनेगा आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आपको एक बार फिर से बता दें, सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सुनेगा विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी सुबह 10 बजे से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत्।

हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस, क्या हाल है जनाब? सब बढ़िया? नौ तपा की तपती हुई गर्मी कैसी बीत रही है आप सबकी? थोड़ी राहत है ना, क्योंकि आजकल भगवान भी थोड़ा मेहरबान है। पर सुबह का क्या है दोस्तों, सूरज भगवान आज भी अपनी ड्यूटी पूरे जोश के साथ शुरू कर दी है। सुबह सुबह की तीखी किरणें ये याद दिला रही हैं कि गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, पर गर्मी अभी छुट्टी पर नहीं गई है। और इस गर्मी की छुट्टी में दोस्तों स्कूल जाने की टेंशन नहीं है और ना ही कॉलेज जाने की टेंशन है, लेकिन एक टेंशन 365 दिन रहती है। सुबह होते ही आंख खुलते ही दिमाग में एक ही बात आती है, ऑफिस के लिए देर तो नहीं हो गई? कोई जल्दी नाश्ता दे दो बोल रहा है, कोई धूप से बचने के लिए गमछा ढूंढ रहा है, कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है तो कोई ऑटो और बस का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच में एक अजीज साथी है हम सबका, जो हर सुबह आपका साथ निभाता है।

सकती है। आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, तो फटाफट से अपने रेडियो और मोबाइल का फुल कर लीजिए वॉल्यूम, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना नंबर 1 मॉर्निंग शो द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। और साथ ही कीजिए आज के अपने मॉर्निंग साथी शुचि का स्वीकार, प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

0: पड़ी।
1: जागो जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई।
2: हाँ जी, मॉर्निंग हो गई है दोस्तों, और अब धीरे धीरे शहर भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कोई ऑफिस के लिए निकल चुका है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई घर के कामों में व्यस्त है, तो कोई चाय की पहली चुस्की के साथ दिन की शुरुआत कर रहा है। लेकिन इन सब भाग दौड़ के बीच आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या मिस कर दिया है। अरे दोस्तों, आज का दिन ही कुछ खास है, क्योंकि आज की तारीख है 2 जून, और जैसे ही 2 जून का नाम आता है हमारे मन में एक ही बहुत मशहूर मुहावरा याद आ जाता है, 2 जून की रोटी। कितना दिलचस्प है ना कि एक तारीख हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिला देती है। दोस्तों, 2 जून की रोटी सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों की कहानी है। सुबह से शाम तक इंसान जो मेहनत करता है, उसके पीछे अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की खुशियां और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी करता है। खेतों में काम करने वाले किसान हों, सड़कों पर मेहनत करने वाले मजदूर हों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हों या घर संभालने वाली गृहिणियां हों, हर किसी की मेहनत में एक ही भावना छिपी होती है कि घर में सबके चेहरे पर संतोष और सुकून की मुस्कान बनी रहे। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी बड़ी सफलताओं की बातें करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। समय पर मिला भोजन, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना और दिन भर की मेहनत के बाद ये महसूस करना कि आज का दिन सार्थक रहा, यही तो असली सुख है हम सबका। आज 2 जून के दिन एक पल निकालकर उन सभी लोगों के बारे में भी सोचिए जिनकी मेहनत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचता है। किसान, सब्जी विक्रेता, दूध वाले, रसोई में भोजन बनाने वाले हाथ, इन सब की मेहनत हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी, अपनों का साथ और चेहरे पर मुस्कान है, तो यकीन मानिए आपके पास खुश होने की बहुत बड़ी वजह है। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, अपनी होस्ट और दोस्त शुचि के साथ। दोस्तों, बातें तो हम और भी करते रहेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और बने रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। और दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। स्वच्छ वाराणसी की मुहिम तेज। दुर्गा कुंड वार्ड में विशेष जागरूकता अभियान, दुकानदारों को कचरा प्रबंधन का दिया संदेश। जी हां दोस्तों, नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 15 दिवसीय विशेष सफाई अभियान के तहत दुर्गा कुंड वार्ड में व्यापक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम, एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप तथा संबंधित सेक्टर प्रभारियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर नागरिकों और व्यापारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वे नगर निगम के कचरा संग्रहण व्यवस्था से जुड़कर नियमित रूप से अपने प्रतिष्ठानों का कचरा निगम के कर्मचारियों को सौंपें। साथ ही जिन व्यापारियों ने अभी तक नगर निगम की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है अथवा कचरा प्रबंधन संबंधी पर्ची नहीं कटवाई है, उन्हें तत्काल पंजीकरण कराने और नगर निगम की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित।

किया गया। अभियान के दौरान टीम ने स्थित जीवीपी का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को इन स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से न केवल गंदगी बढ़ती है बल्कि इससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सफाई निरीक्षक अर्चना विश्वकर्मा, जोनल स्वच्छता अधिकारी, सुपरवाइजर तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप की ओर से टीम लीडर प्रदीप कुमार, टेक्निकल सर्वेयर रामेंद्र पांडे और राजकुमार गुप्ता ने लोगों को कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण के महत्व की जानकारी दी। आईईसी की टीम सदस्य शगीना परवीन ने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ही वाराणसी को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाया जा सकता है। नगर निगम ने बताया कि आगामी दिनों में यह विशेषकर अभियान शहर के अन्य वार्डो में भी चलाया जाएगा। कैंट रोडवेज की सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक, बनेगी नई पुलिस चौकी। अवैध होटलों और अतिक्रमण पर कसेगा शिकंजा। शहर के प्रमुख यातायात केंद्रों में शामिल कैंट रोडवेज और बस पार्किंग क्षेत्र की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। यात्रियों की बढ़ती संख्या, लगातार बढ़ते यातायात दबाव तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए क्षेत्र में नई पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित होटलों और बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कैंट रोडवेज क्षेत्र वाराणसी का अत्यंत व्यस्त इलाका है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। बस स्टेशन, पार्किंग क्षेत्रों और आसपास के बाजारों में लगातार भीड़ बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की स्थायी मौजूदगी आवश्यक महसूस की गई। इसी उद्देश्य से यहां एक नई पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। एसीपी ने बताया कि प्रस्तावित चौकी से क्षेत्र में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। इससे यात्रियों, पर्यटकों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुरक्षा वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि चौकी के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान के चयन की प्रक्रिया चल रही है और इस संबंध में उच्चाधिकारियों के स्तर पर विचार विमर्श जारी है। इसी के साथ प्रशासन ने कैंट रोडवेज क्षेत्र में फैली अतिक्रमण की समस्या पर भी सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों का कहना है कि सड़क किनारे अवैध ठेले, अस्थायी दुकानें तथा सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहले चेतावनी दी जाती रही है, लेकिन अब बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम नियमित निगरानी कर ऐसे मामलों को चिन्हित करेगी। मेहनत को सम्मान, लगन की पहचान करके योगी सरकार ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके उनके हौसलों को उड़ान दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ में मुख्य आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश की मेरिट सूची में छठवां स्थान प्राप्त करने वाले पीएम श्री राजकीय क्विंस इंटर कॉलेज हाई स्कूल के छात्र सूर्यदीप प्रजापति को भी सम्मानित किया। लखनऊ में आयोजित इस सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण वाराणसी स्थित सर्किट हाउस सभागार में दिखाया गया, जहां मौजूद विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और अधिकारियों ने मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान का साक्षी बनकर उनके उत्साह और उपलब्धियों की सराहना की। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में वाराणसी के विद्यार्थियों ने प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल की। वाराणसी में हाई स्कूल की परीक्षा में परिणाम 91.49% था, वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में परीक्षा का परिणाम 79.41% रहा। ये आंकड़े केवल परीक्षा परिणाम या सफलता की कहानी नहीं बताते, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता, अनुशासन और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करने का जज्बा लगातार मजबूत हो रहा है। सम्मान समारोह में काशी का नाम रोशन करने वाले पीएम श्री राजकीय क्विंस इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के मेधावी छात्र सूर्यदीप प्रजापति के चर्चा विशेष रूप से रही, जिन्होंने प्रदेश की मेरिट सूची में छठवां स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया। एक साधारण छात्र से प्रदेश स्तर की पहचान तक का ये सफर मेहनत, अनुशासन और

निरंतर प्रयास का परिणाम है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया, जिसने न केवल छात्र बल्कि पूरे वाराणसी को गौरवान्वित किया है। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन में क्या है खास। सन 1996 में यूक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश बना था। सन 1999 में दक्षिण एवं उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर सहमति हुई थी। तो ये थे इतिहास में आज के दिन की खास बातें। और अब दोस्तों समय हो गया है आप सबसे टाटा बाय-बाय करने का। जल्दी मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी और सकारात्मक बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे कुछ ही देर में लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में

0: प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
1: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त किया जाए, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित

0: सूचित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं निर्मल सैनी का गिटार वादन, राग है नट भैरव। आपके साथ तबला संगत की है चंदन विश्वकर्मा ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्मल सैनी का गिटार वादन, राग था नट भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात बस कुछ ही पलों में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।

0: एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 branches also। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते

0: महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ATS ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। ATS ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों

0: की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। इंडिया एंड यूएस हैव फाइनलाइज्ड मोस्ट एलिमेंट्स of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Mistry said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 चार गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामानिकारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इख्तदारे आला और इलाकाई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the president has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खासतौर पर तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मस्नूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफ्द के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबार

0: उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली जिले में है। जंगलात के महकमे ने सियाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ्फुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सियाहों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाकई है जहां मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सियाहों को जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफर को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा दरिया पर जेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाकये की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियां तशकील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया के जिला इंतजामिया की जानिब से तशकील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाकये से वाबस्ता सभी इंतजामी, तकनीकी और तरीकाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जांच कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्ती रानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अवी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरान खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कान पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 गोल किया, जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूल ए में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवसुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहां रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 एमएलए संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क्यादत मुखालिफ बयान की वजह से की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ।

0: साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया, जबकि सदर ऊ मिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर ऊ मिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-1 4 गोल से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे मधुरिमा प्रोग्राम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658,
8: 0542227658।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारतीय पार्श्व गायिका और जबरदस्त सिंगर सुमन कल्याणपुर का। इनका देहांत अभी हाल में ही यानी 31 मई सन 2026 को 89 की एज में हुआ। सुमन कल्याणपुर 1960 और 1970 के दशक के बीच एक लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर थी। अपने लोकप्रिय करियर में उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा फिल्मी गाने और गैर फिल्मी गाने गाए। इनमें हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी और भोजपुरी गाने शामिल हैं। इनमें से करीब 857 हिंदी गाने हैं। तो आज की प्लेलिस्ट होगी इनके गीतों के नाम।

सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सन 1945 में इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई आकर इन्होंने संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कई बॉलीवुड प्रशंसक फिल्म जब जब फूल खिले 1965 में जो रिलीज थी, लोकप्रिय गाने नाना करते प्यार और दूसरे क्लासिक जैसे फिल्म ब्रह्मचारी, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और फिल्म बात एक रात की, न तुम हमें जानो की पहचान लता मंगेशकर के गाने के तौर पर करते हैं। असल में इन सदाबहार गानों में सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज है। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती जुलती है कि बहुत से लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते।

सुमन जी ने भारतीय फिल्म उद्योग में उस वक्त कदम रखा जब यहाँ मशहूर बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा था। इसके अलावा सुमन जी की तुलना लता मंगेशकर से होने लगी थी। फिल्म जगत के तौर तरीकों और इनकी तुलनाओं के बावजूद सुमन जी ने प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ी और अपना मुकाम बनाया और अपना रास्ता उन्होंने खुद तय किया।

0: आप सुन रहे हैं मधुरिमा प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर के बारे में। इनके बारे में और भी ढेर सारी बातें होंगी, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: ऐसा कहा जाता है कि सुमन जी गायकी में अपना करियर बनाने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इनकी परवरिश ढाका में हुई थी, जहां ना तो उनके परिवार में किसी सदस्य का कला क्षेत्र में कोई ताल्लुक था, ना ही फिल्मों में कोई दिलचस्पी। सुमन जी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस 1952 में ऑल इंडिया रेडियो में दी। इसमें उन्हें अपना पहला फिल्मी गाना हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने अपना पहला फिल्मी गाना मराठी फिल्म शुक्राणू चंदाणी, जो कि 1953 में था, उसके लिए गाया था। एक और संगीतकार मोहम्मद शफी शेख मुख्तार ने शुक्राची चंदाणी के गाने सुने और उन्होंने तुरंत सुमन को हिंदी फिल्म मंगू 1952 में गाने के लिए चुन लिया। ये सुमन जी की पहली फिल्म थी। सुमन कल्याणपुर ने सिनेमा में अपना करियर में बात एक रात की, दिल एक मंदिर दिल ही तो है, जहां आरा, सांझ सवेरा, नूर जहां साथी और पाकिजा जैसी फिल्मों में गाने गाए। जब वे अपने करियर के शिखर पर थी, तब उन्होंने उस समय की शीर्ष अभिनेत्रियों के लिए आवाज़ दी, जैसे मीना कुमारी, नंदा तनुजा और नूतन साधना।

सुमन जी का इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही मधुर और सुनहरा सफर रहा। फिल्म जगत के तौर तरीकों और इन तुलनाओं के बावजूद सुमन जी ने प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ी और मकाम हासिल किया।

सुमन जी को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें भारत सरकार की तरफ से 26 जनवरी 2023 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2024 महाराष्ट्र टाइम्स द्वारा महाराष्ट्र भूषण सम्मान से इन्हें नवाजा गया।

श्रोताओं, इतने कम वक्त में इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात कर पाना मुमकिन नहीं, फिर भी एक छोटी सी कोशिश। सुमन कल्याणपुर को शत शत नमन। आज की मधुरमा इनके गीतों के नाम। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी।
1: अभी आप सुन रहे थे मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं, सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडु नगर कानपुर नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधन

0: कदमों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
1: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि आईटीआई में कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे आईटीआई करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे आईटीआई में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें, तो इन बच्चों को भी इंडस्ट्री में घुमाएं देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीख रहे हैं, काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दे रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के मध्य समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
2: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
4: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदार

0: को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
1: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
0: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। थाना चौक वाराणसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष शर्मा पुत्र लखन शर्मा निवासी सीके 10/65 ब्रह्मनाल चौक वाराणसी। संतोष शर्मा दिनांक 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को अंतिम बार मैदागिन स्थित सप्तसागर दवा मंडी के पास इन्हें देखा गया था। ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें उस प्रकार है, उम्र है 69 साल, इनका रंग है गेहुआ, इनका कद है 5 फिट, सफेद बाल और इनके सफेद दाढ़ी है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद धोती, पूरी बाह का सफेद काला धारीदार स्वेटर और हाथ में इनके छड़ी था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या चौक थाना चौक को सूचित करें। अगली सूचना है चंदन उर्फ पंकज पुत्र छोटेलाल निवासी दीनदासपुर थाना जनसा कमिश्नरेट वाराणसी। चंदन दिनांक 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को रात 8 बजे से लापता है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है, उम्र है 26 साल, कद 5 फिट 5 इंच, रंगे हुआ, इनकी मानसिक स्थिति सामान्य है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद रंग की शर्ट और जीन्स की पैंट पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष जनसा को सूचित करें 9454404386 पर।

अगली सूचना है जैतपुरा कमिश्नरेट से सैयद मंजर इमाम रिजवी पुत्र सैयद आफताब रिजवी निवासी J/100/24 ख्वाजापुर थाना जैतपुरा। ये दिनांक 13 मार्च 2026 को रात 8 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 44 वर्ष, कद 4 फीट 11 इंच। लापता होने के समय इन्होंने पिंक कलर की शर्ट और बादामी कलर का पैजामा पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार

0: सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार काजल देवी पत्नी संजय कुमार श्रीवास्तव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर वाराणसी। काजल देवी दिनांक 21 मार्च 2026 दिन में 2 बजे से जगदीशपुर से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 26 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। लापता होने के समय इन्होंने हल्के नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और पैर में इनके सैंडल था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से हाजिर है। सलाम मोहब्बत के साथ आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामिने बज़्म, इस मुल्क को ऐसे ऐसे नामवर हीरे मिले हैं कि जिनकी इल्म व फ़न, जिनकी काविशात से ये मुल्क खूब चमक रहा है, खूब दमक रहा है। उनके कलम से जो लिखा वो अमर हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ऐसे ही अनगिनत शेरों, अनगिनत गज़लों के मालिक शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को आज इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं। खाक में क्या सूरतें होंगी, इस सिलसिले के तहत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल इस पर तफसील से रोशनास करा रही हैं मोहतरमा शिफा मरियम। समात कीजिए ये तकरीर।
2: शायर मशरिक अल्लामा इकबाल एक ऐसी हमगीर शख्सियत के मालिक हैं जिसे चंद सफात में समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो शायर होने के साथ साथ फलसफी भी हैं। उनकी शायरी जिंदगी का एक मुदल्लल और कुल्ली तसव्वुर पेश करती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई। इकबाल के बुजुर्ग कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। वालदा मजहबी और खुदा तरस खातून थीं और वालिद सूफी बुजुर्ग थे। इस तरह शुरू ही से तसव्वुफ और शरीयत ने उनकी किरदार साजी में अहम रोल अदा किया। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम मीर हसन साहब की दरसगाह से हासिल की। उसके बाद स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट से एफए तक तालीम मुकम्मल की। अल्लामा इकबाल ने 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और 1899 में एमए इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इस कॉलेज में प्रोफेसर आर्नल्ड ने उन्हें फलसफा पढ़ाया जिनसे वो बेहद मुतासिर हुए। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही अरबी और फलसफी के शोबे में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 1905 में अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने फलसफे अजम के मौजू पर पीएचडी की और 1908 में वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। हुकूमत बरतानिया ने 1923 में उन्हें सर का खिताब दिया और इस अजीम शायर ने 21 अप्रैल बरोज जुमेरात 1938 ईस्वी को इस दारे फानी को अलविदा कहा। अल्लामा इकबाल की शायरी का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए हर तबके को अपनी जानी मुतवज्जे किया। वो आला अखलाकी कदरों और इंसानी अजमतों के शायर हैं। अल्लामा इकबाल

शायरी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। उन्होंने इब्तदाई दौर में जो नज़में लिखी वो वतन की मोहब्बत की आला मिसाल हैं। उनकी इब्तदाई दौर की नज़मों में हिमालय, तराने हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत और नया शिवाला वगैरह काबिले जिक्र हैं। नज्म हिमालय में इकबाल ने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, उसके दिलफरेब मनाजिर और उसकी अजमत रफ्ता के गुन गाए हैं। ए हिमालय, ए फसीले किश्वरे हिंदोसिता, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। तराना हिंदी अल्लामा इकबाल की वतन परस्ताना शायरी का आला तरीन नमूना है। मादरी वतन से उनकी वालेहाना मोहब्बत का इजहार होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। इस नज्म में अल्लामा इकबाल ने मजहबी

0: है, क्योंकि इश्क हकीकी माखज़े हयात भी है और मकसूदे हयात भी, वो जादे हयात भी है और मंजिले हयात भी। अनकोट। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म इश्क और मौत, जो कि टेनिसन की नज़्म का तर्जुमा है, उसका मौजू ये है कि इश्क के फरिश्ते की मौत के फरिश्ते से मुलाकात हो जाती है। नज़्म इस अंदाज में शुरू होती है कि मौत कहती है, उड़ाती हूँ मैं रख्त हस्ती के पुर्जे, बुझाती हूँ मैं जिंदगी का शरारा, मगर एक हस्ती है दुनिया में ऐसी, वो आतिश है मैं सामने उसके पारा। शरर बन के रहती है इंसान के दिल में, वो है नूरे मुतलक की आंखों का तारा। सुनी इश्क ने गुफ्तगू जब कजा की, हंसी उसके लब पर हुई आशकारा। गिरी इस तबस्सुम की बिजली अजल पर, अंधेरे कहो नूर में क्या गुजारा। बका को जो देखा फना हो गई वो, कजा थी शिकारी कजा हो गई वो। अल्लामा इकबाल की इश्क की न इंतहा है और न इब्तिदा, और खुद इकबाल उसकी इंतहा के कायल नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक जिंदगी अजल से अबद तक जुस्तजू ही जुस्तजू है। हर लहजा नया तूर नई बरक तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक न हो तय। उनके नज़दीक इश्क मोहब्बत में शिद्दत का नाम है। इश्क की आखिरी मंजिल ये है कि आशिक माशूक की खुदी में गुम हो जाए। इश्क उनके नज़दीक वो सोजो मस्ती और तड़प है जिससे इंसान कामलियत हासिल करता है। उनका इश्क नाम है एक आलमगीर कुव्वत हयात का, जज्बे अमल से सरशारी का, हुसूले मकसद के लिए बेपनाह लगन का, अज़्म व आरज़ू से आरास्ता जहद मुसलसल का, बका व इर्तिका का। जो हर लम्हा अहवाले नौ का शाइक है, उसे एक हालत पर कायम रहना पसंद नहीं, हर लम्हा जहाने नौ पैदा करना उसकी फितरत में दाखिल है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फुकाँ है जिंदगी। जिंदगानी की हकीकत को कन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशो संगे गिरा है जिंदगी। अल्लामा इकबाल की जिंदगी से भरपूर ख्यालत तो तसव्वुरात का अंदाज़ा ज़ौक़ो शौक़ खिज़्रे राह साक़ीनामा मस्जिद कुतुबा जैसी शाहकार नज़मों से लगाया जा सकता है, जो उर्दू शायरी का कीमती वर्षा है। अलगर्ज़ अल्लामा इकबाल की शायरी में जिंदगी का हर पहलू मौजूद है।
1: खाक में क्या सूरतें होंगी, इस सिलसिले के तहत अभी आप समाप्त कर रहे थे ये तकरीर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। मुकर्रर थीं मोहतरमा शिफा मरियम। आइए इसके बाद शेर व अदब की महफिल में लिए चलते हैं और गज़ल का लुत्फ़ लेते हैं, क्योंकि गज़ल जिसको हर दौर में पसंद किया जाता रहा है और ये खुद कलाम शायर की शक्ल में हो तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है और चार चांद लग जाते हैं। कलामी शायर के तहत समात करते हैं जनाब अकील मियां नुमानी से उनका ताज़ा कलाम।
2: गज़ल का मतला अर्ज़ करता हूँ, मुलाहज़ा कीजिएगा कि जुदा हुए तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, जुदा हुए तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, अब ऐसा लगता है शायद वो इश्क था ही नहीं, अब ऐसा लगता है शायद वो इश्क था ही नहीं। एक आरज़ू का सफ़ीना है दिल के दरिया में, एक आरज़ू का सफ़ीना है दिल के दरिया में, गुजर गए कई तूफ़ान वो डूबता ही नहीं। एक आरज़ू का सफ़ीना है दिल के दरिया में, गुजर गए कई तूफ़ान वो डूबता ही नहीं। किसी की बातों में आकर हम इस कदर खुश हैं कि जैसे सामने अब कोई मसला ही नहीं, जुदा हुए तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, अब ऐसा लगता है शायद वो इश्क था ही नहीं। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। ये वाकए दिल नशीं बहुत थे, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। मैं मुतमईन हूँ कि लब पुशाई से मैंने हद अदब न तोड़ी, मैं मुतमईन हूँ कि लब पुशाई से मैंने हद अदब न तोड़ी, वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सब ने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। एक गज़ल के चंद शेर तरन में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा।

मक्ता पेश है। चंद लम्हात की लगजिश में अकील, चंद लम्हात की

0: अभी आप जनाब अकील नुमानी के कलाम से महजूज़ हो रहे थे और इसी के साथ अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं तूफानी चौबे और साथी। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डिफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: Absolutely, Shubham. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubham also mentioned about

0: repay loans, and then, because the Mudra loan, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujjwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubham. देखिए अभी शुभम ने self-employment की बात की, stand up India scheme भी एक ऐसी scheme है जिसके तहत 15,000+ crore लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जैसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 levels पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदित्य, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है. जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया

0: गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के चार स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये चार स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDTalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झंकार।

आज बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की पुण्यतिथि है। वो कलाकार जिसने भारतीय सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि भावनाओं और भारतीय संस्कृति की पहचान दी। राज कपूर की फिल्में आज भी भारत की आत्मा, संगीत और संवेदनाओं को जीवित रखती है। तो आज की प्लेलिस्ट इनके नाम कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनाड़ी से। मुकेश की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म श्री 420 से। आवाज है मन्ना डे की, बोल शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। आइए, आवारा फिल्म से मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म से। मन्ना डे की आवाज है, नीरज के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: ए भाई दर...

0: बाहर है आता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान में माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगम से, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

शोमैन राज कपूर की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। अब झंकार कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 11 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है अपनी फरमाइशें पूरे करने के लिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं उन फिल्मों के नाम जिनके गाने सुनने के लिए आप हमें संदेश भेजेंगे। हमारा नंबर है 7905519981। फिल्मों के नाम हैं तीसरी कसम, नसीब, सूरज, अनजाना, साथी और पिघलता आसमान। इन फिल्मों के गाने सुनने के लिए आप हमें संदेश भेज सकते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म का गाना। आवाज मुकेश की है, गीत शैलेंद्र ने लिखा है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और फिर हम पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे संदेश। कहना सिर्फ ये है कि कृपया एक श्रोता एक ही बार संदेश भेजें, जिससे कि ऊपर नीचे ना होने पाए और हम सुचारू रूप से आपके संदेश पढ़ सकें। तो फिलहाल शुरू करते हैं ये प्यारा सा गीत तीसरी कसम फिल्म का।

तीसरी कसम फिल्म का ये प्यारा सा गीत था मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र ने लिखा था इस गीत को, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और इस गाने के लिए हमें आप सभी के ढेर सारे संदेश प्राप्त हुए। सबसे पहला जो संदेश है वो है मजनू का टिल्ला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने इस गाने को पसंद किया, इसी गाने को सुनना चाहते थे। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तिलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, तुसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, बसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। मेरठ कैंट से इस गाने को सुनना चाहते थे दिग्दर्शन और कविता गौड़, इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी, आप सभी ने हमें संदेश भेजा काशी नगरी बनारस से। चौधरी महावीर कंबोज, गोल्डी कंबोज, अंकित कंबोज, विपुल कंबोज, ग्राम औरंगाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से आप सभी ने हमें संदेश भेजा। इसी गाने के लिए हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ माँ काली स्थान नवली गाजीपुर से, इसी गाने को सुनना चाहते थे। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। तीसरी कसम फिल्म का ही गाना सुनना चाहते थे राम सकल चौधरी, चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से। सावतपुर छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, आप सभी ने इस गाने को सुनना चाहा। पद्मा टॉकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से इस गाने को पसंद किया सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह।

शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राजस जी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी ने भी इसी गाने को पसंद किया। मुताला महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहते थे विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है नसीब। आवाजें हैं अनवर, कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने नसीब फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

नसीब फिल्म का ये प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे। आवाजें थी अनवर, कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के लिए हमें आप सभी के संदेश प्राप्त हुए। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने हमें संदेश भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद और मल्लू अंसारी। आप सभी ने हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा अहमदनगर बजरडीहा से। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु अरणवानंद और सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश प्राप्त हुआ। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हमें संदेश भेजा रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना, भानु राज और अमित खन्ना और अम्मी ने संदेश भेजा। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। आप सभी का संदेश मिला। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता का संदेश प्राप्त हुआ। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हमें संदेश भेजा दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। इसी गाने को पसंद किया लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी ने इस गाने को सुनना चाहा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे बलकरड़ वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश धनेश्वरी वर्मा। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने इस गाने को पसंद किया। झुमरी तिलैया से महेंद्र चौरसिया इस गाने को सुनना चाहते थे। मेहसोल सीतामढ़ी बिहार से हमें संदेश भेजा मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने। आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस

तेजस्वी यादव का संदेश प्राप्त हुआ। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते थे तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना ने इस गाने को सुनना चाहा। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने इस गाने को पसंद किया। राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने इस गाने को सुनना चाहा। इसी गाने को सुनना चाहते थे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी जागेशपुरी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी इस गाने को सुनना चाहते थे। सुनील यादव, शिव कुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव और नौबत यादव का संदेश भी हमें अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है सूरज। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सूरज फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और इस गाने को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोताओं के बहुत सारे नाम हैं। और पहले हम आपको बता दें कि इस गाने के पहले हमने आपको नसीब फिल्म का गाना सुनवाया था, और इस गाने के लिए हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ था जो हम उस समय नहीं पढ़ सके थे। वो कुम्भार गली कोलगांव से हमें संदेश भेजा, नसीब फिल्म के गाने के लिए पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें इस फिल्म के गाने के लिए, जो अभी हमने सुनवाया सूरज फिल्म का, उसके लिए संदेश जो प्राप्त हुआ। इस गाने को सुनना चाहते थे जौनपुर से ऋषि मौर्या और रोशन कंबोज, सरोज कंबोज, मीनाक्षी कंबोज, पारुल कंबोज। आप सभी ने हमें संदेश भेजा ग्राम गौशाला हरिद्वार उत्तराखंड से। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी क्रिस्टी पटवा ने। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, आप सभी ने हमें संदेश भेजा ग्राम व पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से। वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से हमें संदेश भेजा जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी ने।

फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से हमें संदेश भेजा विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी नीलमपुरी रामापुरी पालीपुरी और सुनील पाठक और वीकेपुरी विनोदपुरी ने हमें संदेश भेजा। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ गांव फरा से जिला हिसार से राजकुमार डोडी प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी ने, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी और अनुराग मोहन का संदेश प्राप्त हुआ। दादरी गेट भिवानी से इस गाने को सुनना चाहते थे कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर मनीष राजभर और आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का संदेश मिला। इसी गाने को सुनना चाहते थे जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े। नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर प्रियंका ठाकुर ज्योति ठाकुर आप सभी ने संदेश भेजा ग्राम चरौंदा पार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। इसी गाने को सुनना चाहते थे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते थे शोभा

कपिल नैना सत्यनारायण और फुंदीबाई नागरी। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से हमें संदेश प्राप्त हुआ, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दनियाल खान, आप सभी ने हमें संदेश भेजा मुंबई महाराष्ट्र से। इसी गाने को सुनना चाहते थे वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, कस्बा कलान, आप सभी ने संदेश भेजा शाहजहांपुर से। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हमें संदेश प्राप्त हुआ रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। चंडीगढ़ से सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह, वाराणसी सुगुलपुरा से परवेज अहमद, सुमन कल्याणपुर जी को इन्होंने श्रद्धांजलि दी, धन्यवाद। एकता कॉलोनी रोहतक से हमें संदेश भेजा सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमें संदेश भेजा मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आयान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक कार्यक्रम में अगला गाना, फिल्म का नाम है अनजाना। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, गीतानंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अनजाना फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने, और इस गाने को सुनने के लिए हमारे श्रोताओं ने, जिन श्रोताओं के संदेश हमें प्राप्त हुए उनके नाम हैं मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप सभी के संदेश प्राप्त हुए। और श्रोता, हम आपको बता दें कि इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया, आप सभी का संदेश मिला। इसी गाने को सुनना चाहते थे पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, आप सभी ने हमें संदेश भेजा, शुक्रिया। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें संदेश भेजा जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे वरंगल से मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा, आयशा और तबस्सुम जुबेरिया ने हमें संदेश भेजा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी ने संदेश भेजा पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर पंजाब से। गांगीवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार, अर्पणा परिहार और सुधा परिहार ने हमें संदेश भेजा। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। फजल का पंजाब से इस गाने को पसंद किया भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडो खेड़ा, शालिनी खेड़ा, देवांशी खेड़ा, आप सभी का संदेश मिला। इसी गाने

को सुनना चाहते थे चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। गंगापुर वाराणसी से इस गाने को सुनना चाहते थे शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, श्वेता, स्नेहा कुमारी और जागृति राय। सिद्धार्थनगर दरियापुर वावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले का संदेश प्राप्त हुआ। मुजफ्फरपुर बिहार से इस गाने को सुनना चाहते थे राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शाहिद हसन आजमी और शमीम अख्तर अंसारी ने इस गाने को पसंद किया। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहते थे नासिर शेख, नाजियान शीर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सापेहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर, आप सभी ने हमें संदेश भेजा। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से इस गाने को पसंद किया सैयद मशरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से इस गाने को सुनना चाहते थे सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। विशाल मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुर इमेलिया जौनपुर से हमें आपने संदेश भेजा। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ चौखुंडी हाथी नगर हाथी बाजार वाराणसी से। एक बार फिर से बता दें, हाथी बाजार वाराणसी से हमें संदेश भेजा संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, आप सभी ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना साथी फिल्म का। आवाजें मुकेश और सुमन कल्याणपुर की हैं, गीत मजरू का, संगीत नौशाद।

साथ ही फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था नौशाद ने, और इस गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए आप सभी श्रोताओं की। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या, इसी गाने को पसंद किया सुकांत कंबोज, चीनू कंबोज, अतीक्ष कंबोज, आप सभी ने संदेश भेजा देहरादून उत्तराखंड से। इसी गाने को सुनना चाहते थे दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, आप सभी ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने इस गाने को पसंद किया। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने इस गाने को सुनना चाहा। बनारस बजरडीहा बनारस से इस गाने को सुनना चाहते थे अनिउल हक अंसारी, इकबाल अंसारी, मल्लू अंसारी, सलीम आज़ाद और अजीज़ुर्रहमान अंसारी, इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा गांव गहमर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल, शिवांगी शिवांश शिवांगी और अन्नू जायसवाल, इसी गाने को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। मुरादापुर मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू परेश, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री और वैष्णवी ढोमने ने इस गाने को पसंद किया। जगह का नाम आपने नहीं लिखा है। बोरखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजा आप सभी श्रोताओं ने विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, आप सभी ने। बटिंडा रोड मर्डी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का संदेश प्राप्त हुआ। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया ने हमें संदेश भेजा। नेहरू चौक से हमें संदेश प्राप्त हुआ डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, आप सभी ने इसी गाने को सुनना चाहते थे। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। भटिंडा पंजाब से इस गाने को पसंद किया प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह एकम और दमन अभिजीत, आप सभी ने संदेश भेजा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय और श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, आप सभी श्रोता।

सुझावों का धन्यवाद। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का संदेश प्राप्त हुआ। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता मस्कीन और आशीष राजा। इसी गाने के लिए संदेश भेजा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने। धमधा ग्राम सुखरी कला से इस गाने को पसंद किया। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल इसी गाने को सुनना चाहते थे। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और अब आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना। फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। आवाज लता मंगेशकर की, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

पिघलता आसमान का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। पटेल नगर मुगल सराय से इस गाने को सुनना चाहते थे सुनील कुमार सिंह। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू। इसी गाने के लिए संदेश भेजा संजू आर अश्विन, शोभा नाथ अवस्थी और आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ चुनार मिर्जापुर से। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इसी गाने के लिए उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल आप सभी ने संदेश भेजा लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। गुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे करनाल बलिया से अमितेश कुमार तिवारी। जमालपुर बिहार से इस गाने के लिए संदेश भेजा सिकंदर कुमार कांति और अविनाश कुमार सोनू, और इनके साथ उद्भव कुमार का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और यश वशिष्ठ। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंड्री ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और इनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी आप सभी ने हमें संदेश भेजा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी गाने को सुनना चाहते थे ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सालवी देशमुख आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ। भारत राम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ मुंगवाल से। छत्तीसगढ़ जोड़ी लाइन मुंगेली से हमें संदेश भेजा मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का संदेश मिला। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोलेनाथ सिन्हा और सचिन और उनके मम्मी पापा ने हमें संदेश भेजा। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन ने हमें संदेश भेजा। जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साहू गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देबेन जी आप सभी ने हमें संदेश भेजा। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख आप सभी ने संदेश भेजा धन्यवाद। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर

सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, आप सभी का संदेश मिला। सोनू बिंद ने हमें संदेश भेजा जौनपुर से। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल, आप सभी ने संदेश भेजा। और इसके साथ ही दीजिए इजाजत, कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
4: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
4: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
4: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
4: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
3: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
4: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
3: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
4: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
3: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
4: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
3: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
4: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन तथ्य कुछ और है
3: जी।
4: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
3: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
4: बताइए।
3: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
4: जी वो तो है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत

0: आसमानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
0: जी
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजी जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
0: जी
1: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।

0: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में

0: जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
1: चलो
2: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो
4: चलो लोहा गर्म हो रहा है।
1: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया

0: की देन है।
1: पास्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पास्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पास्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
5: मेरा बेटा।
3: अच्छा ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।

0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 054

0: दो दो दो सात छः पाँच आठ।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
2: 0542227658।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संचिता गोस्वामी के गाए भजन। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संचिता गोस्वामी के गायलों की, संचिता गोस्वामी के गाए भजन। अभी आप सुन रहे थे इनका गाया भजन, रचना मीराबाई की थी। और अब आइए सुनते हैं अगला भजन, मनु द्वास की रचना है।

संचिता गोस्वामी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गिटार वादन।

कलाकार हैं निर्मल सैनी, राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चंदन विश्वकर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे निर्मल सैनी का गिटार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे चंदन विश्वकर्मा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय

0: छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न में उच्च शिक्षा प्राप्त की।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना श्योपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी

से प्राप्त सूचना के अनुसार धीरज कुमार, जिनके पिता का नाम है अनिल कुमार, पता है HS 13/10 M1 तरना श्योपुर वाराणसी। ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 40 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ है। घटना के समय इन्होंने सफेद शर्ट और काला पैंट पहना हुआ था। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना श्योपुर, जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, मोबाइल नंबर 8285375426।

0: थाना लंका जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार संध्या तिवारी, जिनके पिता का नाम है उपेंद्र तिवारी, पता है नगवा थाना लंका जनपद कमिश्नरेट वाराणसी। संध्या तिवारी दिनांक 21/3/2026 को सुबह 10:30 से नगवा लंका वाराणसी से लापता हैं। उनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 18 साल, रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 2 इंच है। घटना के समय इन्होंने बैगनी रंग की टी शर्ट और भूरे रंग का लोअर पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना लंका जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, मोबाइल नंबर 8874768495 और 8127831933। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण सुनिएगा रात 10 बजे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद विलायत हुसैन खान का गायन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आपको सुनवाएंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे हमारे आज के कलाकार होंगे अनूप जलोटा। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे विनोद कुमार सिंह और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, जिसका विषय होगा कृषि यंत्रों की देखभाल कैसे करें। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे तूफानी चौबे और साथियों के गाए लोकगीत का। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर सुनेंगे आज की बात अर्णव पांडे के काव्य पाठ, यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में सुनिएगा बुंदेली गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। इसके अलावा श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:00 से शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। और अब से थोड़ी देर में यानी 1:15 पर बहनें अपने कार्यक्रम अग्नैया में गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी अजय सिंह और शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, विषय होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।
1: इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने तमकोही राज में मुख्तलिफ महकमों

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम अंगनैया।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोगों के नमस्ते, और साथ में कहीं गुंजाता हूँ कि नमस्ते।
1: नमस्ते हो इमरती दीदी, नमस्ते, और संगे संगे बहनी लोगन के भी नमस्ते।
0: का हो गुंजा?
1: कहीं
0: कि भाई देखा, मौसम तो अब जोन लगत बा कि अब थोड़ा, आज तो बड़ा मौसम हमें अच्छा लगल है।
1: हाँ।
0: कैसे एक दो दिन से ना थोड़ा हल्का धूप, हल्का जोन हो कि मौसम का जो मिजाज समझत हूँ ना।
1: एकदम समझत है। आज तो बाकी सही कहलू है कि आज मौसम तनी नीक रहल है। अब देखा हो लेकिन दीदी मौसम का का हो, कब पलट जाए पते ना चलत हो। देखत हो कितना घाम चलत रहल, अचानक मौसम बदल जात हो।
0: भाई मौसम बदले तो ठीक हुआ, मन ही न बदले कहे कि मतलब हमारे ई हो गुंजा कि देखा अपने घरे में ना जब रहा और गुलजार रहला, बड़ बुजुर्ग रहना, बाल बच्चा रहना, अब तो देखा हो ये समय ना छुट्टी के समय चल बा, घरे में सब आयल बा।
1: हाँ।
0: इतना नीक लगत हुआ ना कि घरे के साझे हो, सब इकट्ठा बैठ जात बा, सब एक दूसरे का हाल चाल करत बा, खाए पिए के बात होत बा। कितना नीक लगे लगा जब घर में बड़ बुजुर्ग रहना, लोग आपस में मिलजुल के रहना। तय
1: एकदम सही बात कहलू इमरती दीदी। अब तो जन छुट्टी का समय चला था तो लइकन बच्चन घरे में मिलत हूँ, और संगे संगे जवन बहनी ससुरे में रहा था इन वो तनी छुट्टी पाए के मायके आ जाता है। और जब घरे में आवत है ना तो एकदम सही कहलू कि कितना नीमन घर लगत हो, जैसे लगत हो कि हर तरफ एकदम गुलजार हो। और संगे संगे जन घर का बड़ बुजुर्ग हूँ ना, उनकर भी मन देखा तनी खुश हो जाता हो। कैसे कि जनते हो दीदी बड़ बुजुर्ग लोगन हुए तो आजकल इतना लोगन के काम काज में एकदम व्यस्त हो गए कि उनके लिए फुर्सते ना हो। अब सब लोगन छुट्टी में जुटत हुए तब तक जाके फुर्सत मिला था।
0: कहीं हो गुंजा कि देखा ये बात तो ठीक हो कि भाई अब छुट्टी की बात कहलू है, लेकिन हम कहें कि भाई काहे ना हर समय, जैसे मान ले भाई दूरे हुआ मजबूरी हो, लेकिन अगर हम एक साथ में रहते ना
1: हाँ
0: घर में, माता पिता, सास ससुर, बड़ बुजुर्ग जे भी अपने पास हुआ है, तो जैसे हम लोग अपने बाल बच्चन बदे देखा कितनों हम लोग व्यस्त रहिला, लेकिन लड़कन बच्चन बदे समय निकाल लेला,
1: एकदम
0: उनके बदे जो ना खाए पिए से लेके उनके पहने ओढ़े से लेके हर तरह का ध्यान कल जाला। तो ऐसे ही जब अपने साथ बड़ बुजुर्ग भी रहत हुआ तो कुल समय में से निकाल के थोड़ा समय उनके पास आप बैठें, उनका हाल चाल पूछें, उनकी कोनो दुख तकलीफ हो तो ओके पूछें, भाई दवाई की जरूरत बा या कोनो औरों तरह की जरूरत बा तो ओके तुरंत पूरा करें। कहे से ऐसे होला ना कि उन्हें भी लगेला कि हमरों क्यों देखभाल करे वाला बा, हमरों क्यों सुख दुख पूछे वाला बा। तो बिल्कुल ये जरूरी है गुंजा ना कि भाई अपने बड़ बुजुर्गों का अगर आप ध्यान दी हैं, उनका जो है सम्मान करी हैं, तो ये जाने अनजाने में जो है तुम्हार बाल बच्चा हुआ ना वो भी एक सीखन है, और आगे चल के जौन आप अपने बड़ बुजुर्गन के सम्मान, प्रेम सम्मान देते हुए, आदर
1: हाँ
0: देते हुए,
1: हाँ हाँ
0: वह उनके अंदर विकसित होला। और कह जाना कि भाई जैसन तुहार करनी रही वैसन तुके
1: फल
0: मिली।
1: मिली। एकदम सही कहलू इमरती दीदी। आ देखा हो सहीयो बात हो कि अपने बड़ बुजुर्ग का साथ कभी ना छोड़े के चाही। कहे से कि वो पूरा अपन जिंदगी लगा देवेलन हम लोगन के पाले पोसे में, बड़ा करे में, हम लोगन के अच्छा मनई बनाए में। फिर बाद में का होला कुछ जनी के तो हम देखी ला दीदी, देख के बड़ा दुख होला। लेकिन का किहल जाए, दूसरे के घर के मामले में बोलल भी तो ना जा सकेला। केहू केहू तो ऐसा हो कि अपने मतलब कि कुल जगह जात हुअन घूमे फिरे, लेकिन घर में जन दू परानी बैठल हुअन उनके ऐसे ही छोड़ देते हुअन। ये देख के बड़ा बुरा लगेला भाई कि अपन जे अपन पूरा जिंदगी तोरे ऊपर खर्च कर देलस, आज उनके तू ये अवस्था में छोड़ देले हुआ, तो ऐसा ना करे के चाहिए।
0: गुंजा एक बात और हम कहब,
1: हाँ
0: कहे कि मतलब हमारे ई हो ना कि भाई थोड़ी देर के लिए मान ला मन ही हुआ भाई उनके पास काम धाम बा, बाहर भीतर के लिए हुआ, इनमें जो ना घर के जो घरैतिन हैं, पतोह हैं, लड़की हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल ई होला कि मान ला जैसे आप ससुराल में हैं, आपके सास ससुर हुआ,
1: हाँ?
0: तो आपके ये कोशिश करे के चाहे कि जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता का देखभाल करत रहनी, अपने भाई बहन का देखभाल करत रहनी, घर की जिम्मेदारी समझत रहनी, वैसे ही ससुराल में जौन भी अपने आपके सास ससुर हुआ, बड़ा बुजुर्ग हुआ, कोने कोने घर में चचिया ससुर हुआ, ददिया ससुर हुआ, तो कई कई रिश्ता रहना है, तो इनमें घरेती लोगन के, बहन लोगन के खास के चाहिए कि भाई इन

0: सोचे कि नहीं, ये हमारे पति का माता पिता हुए, आपका भी उतनी ही जिम्मेदारी उनके प्रति बनल है कि आप उनका देखभाल करें, उनके साथ सुख दुख बांटें, कहीं अगर आपके जाना भी हो तो ये कोशिश करें कि उनकर शाम के खाना हो, उनकर व्यवस्था हो, कह के निकले। कहे से देखा कह जाना कि भाई बड़ बुजुर्ग का जो आशीर्वाद होला ना, वो न जाने कब कहाँ हम लोग के लग जाला। तो ऐसे कोशिश करें कि भाई अपने बड़ बुजुर्गों का सम्मान करत रहें, उनका आशीर्वाद लेत रहें, जिससे कि आप भी सुखी रहें और वो भी सुखी रहें।
1: एकदम सही बात कहत हुई इमरती दीदी। आप बहनी लोगन के भी सोचे के चाही, आ जे लोगन सुनत हुन, खाली बहनिए लोगन नहीं, हम तो कहत ही अपन कार्यक्रम भैया लोगन भी खूब मजे से सुने, उन लोगन के भी सोचे के चाही भाई घर में जौन परानी लोग हुन, बड़ बुजुर्ग हुन, उनकर खास ध्यान रखे के चाहिए, अपने लइकन बच्चन के हमेशा ही सिखावे के चाहिए कि देखा भले एक दफे हम लोगन का बात कम सुना, लेकिन उन लोगन का बात पहले सुना, कहे से कि वो हम लोगन के आश्रय रहेलन।
0: बिल्कुल सही बात कहलु, आश्रय रहना, और देखा कहीं हमार सरकार भी हमें पीछे ना हुए, सरकार भी जो है ना ये कोशिश करते हो कि देश का जो बड़ बुजुर्ग हुआ, बड़े उम्र के लोग हुआ, उनके भी तरह तरह का योजना चला के लाभ पहुंचावल जाए। और यही में देखा ना भारत सरकार का एक योजना चलता हो मनु गुंजा, जो है कौन योजना बताओ तो?
1: आयुष्मान भारत योजना
0: हाँ,
1: भाई।
0: आयुष्मान भारत योजना, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना हो। इमे देखा जोन भाई अपने समाज का गरीब लोग हुआ, वंचित लोग हुआ, या 70 साल से ऊपर जे भी हो गल हो, ओकरे बदे सरकार जोन हो ये योजना चलावत हो। और खास के जे आर्थिक रूप से कमजोर हो, जेके कि पैसा के कमी हो, या जे अपने इलाज ना करा पावत हो, एकरे बदे सरकार जोन हो योजना चलावत हो। और कहें कि ये योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया तक का जोन हो कैश कैश से लेस माने कह दी सुविधा प्रदान कर जाए। इनमें आप जा करके ये योजना का लाभ उठा सकन, अपन स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी हो ओकर इलाज करा सकन। तो कहीं ना कि देखा गुंजा, ये जवन भी योजना चलावल जला ना, ये हम लोग के जो नागरिक लोग हुआ उनके सुविधा बदे चलावल जला, उनके लाभ बदे चला जाता। तो इनमें देखें का पात्रता हुई, कैसे योजना का आपके लाभ मिली, ये सारी जो चीज जो ये आपके जो हो ऑनलाइन जो कह जला, आप अपने मोबाइल पे जा करके खोल करके आप देख सकन है कि आप कैसे के फार्म के भर सकन है, उसमें का का कागज लगावे के हो, ये सारी चीजें जान के आप योजना का लाभ उठावे और स्वास्थ्य संबंधी जोन भी आपके इलाज कराओ के ओके करावे।
1: तो देखा इतना दीदी हमारे जो है ना इतना ढेर का जानकारी तो दे दिलिन, आई जानकारी के संगे संगे दीदी देखा ये जो जरूरी संदेश है ना ओहू के सुन लेवल जाए।
0: बिल्कुल सुन लेवल जाए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ 0542227658।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: गुंजा।
1: हाँ?
0: भाई जरूरी संदेश तो हम लोग सुन लेवल, संदेश से भी बहुत सारी जानकारी हम लोग के मिलल है, सुनवाल जला, लेकिन कहीं ना कि थोड़ा मन मनसायन हो जाए, फिर आगे हम लोग बत कही कल जाए। तो लगे हाथ बहनी लोगन के का सुनात हो?
1: बहनी लोगन सुने ई गीत, फिर ओकरे बाद बतियावल जाए।
0: बिल्कुल।

0: का गुंजा?
1: अरे बड़ा नीक गीत सुनैलू है दीदी, हमार तो मन झूमे लगल।
0: कही कि जब भाई तैसा थकल हारल रहा और नीक के गीत सुने के मिल जाला ना, तो थकान अपने आप थोड़ी दूर हो जाला। तो कोशिश हम लोग के यह रहा कि बहन लोग जो हो अपन मन मनसान करत रहे, अपन कार्यक्रम सुनत रहे। और जब बहन लोग के बात करती थी ना, तो बहन लोग भाई घरे में रह नहीं, बाल बच्चा पालत हैं, घर द्वार देखत हैं, गुरु चौवा देखत हैं, और कहीं कि सब तरह का काम करत हैं। तो कहीं कि अपने बहन लोगों के पास भी तरह तरह का हुनर होला हो, उनके पास इतनी कला होला ना कि भाई वो खाली समय में बहुत सारा ऐसा काम कह के अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो सके नहीं। और अपने काहे के कहीं कि अपने आसपास के महिला लोगों के भी देखा जुटा करके तरह तरह के लोग काम करते हैं, तरह तरह का सामान बनावत हैं, जैसे कि वो आत्मनिर्भर होते हैं। तो कहीं ना कि गुंजा यही पे बहन लोगों के खूब नीके का हम बातचीत सुनवा चल थी ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के अवसर। अजय सिंह से बतियोले ही सिखा श्रीवास्तव, तो बहन लोग ही बत कही सुने।
2: श्रोता बहनी, हर केहू के पास घरे के काम के अलावा बहुत समय होला, और उस समय का अगर सही उपयोग करके दो पैसा अगर कमा लेवल जाए तो अपने घर का जौन आर्थिक स्थिति है ओके मजबूत बनावल जा सकेला। और ए समय में सरकार के ओरी से भी ए तरह का बहुत व्यवस्था कईल जात हो कि अगर बहनी लोगन के अंदर कुछ हुनर है, कुछ कला कौशल है, तो ओसे वो आगे बढ़ सकेलिन, चाहे कोनो उद्योग भी कर सकेलिन। तो कौन कौन रोजगार कर सकेलिन बहनी लोगन, और इस स्वरोजगार के माध्यम से बहनी लोगन कैसे आगे बढ़ सकेलिन, यही कुल विषय पर जानकारी देवे बदे आज हमन के बीच में आयल हुआ अजय कुमार सिंह जी, ईसाई ग्रामीण विकास संस्थान का निदेशक हुआ, और आप लोगन के रोजगार से संबंधित बहुत सारा जानकारी दी है। तो भैया आपका अपने कार्यक्रम में हम स्वागत करत है।
3: धन्यवाद।
2: आप बहनी लोगन के ई बताई कि ई जौन ग्रामीण महिला लोगन हैं अगर रोजगार करल चाहत हैं तो के तरह से शुरुआत कर सकेली?
3: हम लोगों को जो संस्थान है और भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश का पहला रूरल वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क यानी ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क है, जहां पर महिलाओं को छोटे छोटे उद्यम लगाने के लिए, जैसे कि उनको अपना हैंड वॉश हो गया, मंदिरों पर जो फूल चढ़ते हैं उस फूलों से क्या क्या इको फ्रेंडली अगरबत्ती धूप साबुन इस तो बना सकती हैं उसके, उसके अलावा सिलाई कढ़ाई ये सब चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण सिर्फ न दे करके हम लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने जो जो सामान बना रही हैं कैसे कितना फिनिशिंग हो सके।

0: कैसे ब्रांडिंग हो सके, कैसे उसको हम मार्केट में दे सकें। कि हम लोग का मानना है कि हर महिला के अंदर कोई कोई हुनर होता है, बस उनको एक प्लेटफार्म मिलने की जरूरत है ताकि वो थोड़ा सीख करके उनको इम्प्रूव करके थोड़ा और अच्छा कर सके उसमें। तो इस हिसाब से हम लोग उसमें फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, न सिर्फ अपने सेंटर पर दे रहे हैं बल्कि बनारस जनपद के जितने ब्लॉक है जहाँ से जैसा महिलाओं का डिमांड आता है वहाँ पर हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हमारे ट्रेनर जाकर देते हैं। साथ ही उन महिलाओं को जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो आया है उसके अंतर्गत जो महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं सीखने के बाद खुद का उद्यम लगाना चाहती हैं तो सरकार उनको 5 लाख तक रुपए का 0% इंटरेस्ट पर सपोर्ट भी कर रही है। साथ
1: अच्छा
0: ही वो समय से अपना पैसा दे रही हैं तो उनको 50,000 10% उनको छूट भी, यानी 4.5 लाख रुपए उनको जमा करना होगा। और बैंक में जनरली होता है कि आदमी लोन लेता है, कुछ लेता है कि दूसरे दिन का उसका ब्याज चालू हो जाता है, लेकिन इसमें इतना बढ़िया योजना है कि 6 महीने के बाद हमारा पहला किस्त जारी होगा। सरकार का मानना है कि भाई कि उसमें जो चीजें होती है कि हम कोई नया उद्यम लगा रहे हैं उसको हमारा जमते जमाते 3-4 महीने 5 महीने लग जाता है, तो 6 महीने के बाद उसका पहला किस्त चालू होता है। इसके साथ साथ ये तो बड़ा अमाउंट होगा, छोटे अमाउंट में जैसे जो महिला कोई सिलाई कढ़ाई करना चाहते हो, कोई बुटीक लगाना चाहती है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, तो उन महिलाओं को भी ट्रेनिंग हम लोग एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग दे, उद्यमिता की ट्रेनिंग दे करके कैसे उद्योग लगाएं, कैसे हम अपना सामान बेचें, कैसे हम कस्टमर को आकर्षित करें, उन लोगों के लिए 0% पर टाटा स्काई की तरफ से हम लोग देते हैं 40,000 रुपए का 0% इंटरेस्ट पर हम लोग सपोर्ट करते हैं उसमें। और साल भर तक उसमें 0% ब्याज रहता है। और साल भर के बाद यदि कोई महिला मान लीजिए 20,000 जमा की है या कुछ पैसा जमा की है थोड़ा बहुत रह गया तो उस बाकी पैसे का 4% वार्षिक उनको लिया जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग उनको डिजिटली ट्रेनिंग भी देते हैं कि भाई महिला है तो भाई हम घूम करके अपना हर सामान नहीं बेच सकते, तो हम जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं वो सब भी हम लोग उन महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। साथ साथ उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता को देखते हुए कैसे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और ताकि वो देश के भी अपनी भागीदारी निभा सके। फिर जी
1: अच्छा, तो बहुत अच्छा ही चला था आपका कार्यक्रम। तो आपकी कार्यक्रम से इस समय कितना महिला लोगन जुड़ल हुई हैं लगभग?
0: हम लोगों से कार्यक्रम से 5,000 से ज्यादा महिलाएं ट्रेंड हो चुकी हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ काम कर रही हैं। उन सफल महिलाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वार्ता कर चुके 3 महिलाओं से, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मानित करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उन महिलाओं को बुला करके सम्मानित भी किया है और इससे उनका देखा देखी और महिलाएं उत्साहित होकर के काम कर रही हैं। आज के डेट में हमारे यहाँ भी अभी हैंड वॉश हो गया, उसके साथ फिनाइल हो गया, अगरबत्ती का धूप का जो इको फ्रेंडली गाय के गोबर से कैसे क्या जी कम पैसे में अपने घर बैठे घरेलू महिला अपने 2 पैसा इनकम कर सके उस पर हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है चीज उसमें।
1: अच्छा, जैसे आप कहलिन है कि सरकार के उरी से ऋण का योजना भी है
0: जी
1: कि ऋण दिहल जात है, तो जैसे अगर केहू अचार मुरब्बा या कोनो छोटा उद्योग करल
0: जी,
1: चाहता
0: जी।
1: तो ओके का पहले आके ट्रेनिंग लेवे के हुई कि अगर वो जानत है तो वो सीधे ऋण बदे जो है वो कोशिश कर
0: नहीं
1: सके?
0: कोई बनाना देखिए अपनी एक अलग चीज हो जाती है, बनाने की मात्रा में जैसे हम किस मात्रा में क्या चीज मिला रहे हैं ताकि हम कोई भी चीज एक बार अगर खाने की चीज है उसके हम बना रहे हैं तो हम ताकि एक बार जो बन गया दूसरी बार भी जब बना तो उसका टेस्ट हमारा वही रहे उसमें,
1: अच्छा
0: उसका मेन ध्यान होता है। साथ साथ उसमें जो गवर्नमेंट का जो है FSSAI लेना और क्या क्या उनको उद्यम आधार बनवाना, क्या क्या हम गवर्नमेंट से सहायता मिल सकती है वो सब जानना जरूरी होता है ताकि उनको सुखी खाने की चीज है किसी को खाने का नुकसान न करे नहीं तो परेशानी फंस सकती है उसमें। फिर जी
1: अच्छा, बनारस में कहाँ पर जगह पर ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण
0: बनारस
1: दिया जाए?
0: बावतपुर एयरपोर्ट के पास बसनी जगह है, वहीं पर भारत सरकार द्वारा स्थापित है आपका ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क जो है स्थापित है जिसका संचालन साई ग्रामीण विकास संस्थान कर रहा है और उसके माध्यम से उन लोगों को फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें। और सरकार की और कई बहुत सारी योजनाएं वहां पर चल रही हैं ताकि सरकार का मान हम लोग का मानना है कि हर महिला के अंदर जो हुनर है या जो हमारी विरासत है जैसे आपका जो हैंडवर्क बहुत चीजें गांव को जो विलुप्त हो रही है हमारी चीजें उसको हम कैसे कैसे तकनीक के माध्यम से जिंदा रख सके ताकि उनके परिवार जो उनके भाग रहे हैं उस काम से उसको उनको रोजगार मिल सके और हमारी विरासत भी लोगों के सामने जिंदा रहे उसमें। फिर
1: बहनी लोग अगर सुनत हुई हैं तो ध्यान दी हैं कि इतना बढ़िया ये रोजगार का माध्यम चलल हो कि भाई इतना सुविधा तो मिली नहीं कि अगर पैसा

0: रुपया भी नहीं है, तब वो सरकार सहयोग करा था,
1: बिल्कुल
0: एकरे साथे साथे प्रशिक्षण भी दिहल
1: जी
0: जाता। अच्छा, ई जैसे बहुत दूर दूर का बहनी लोगन हैं, तो वो वहां तक पूरा संस्था तक पहुंच जाए लेन, दूर दूर से आवे लेन?
1: नहीं, अभी तक हम लोग के यहाँ 20-25 किलोमीटर तक महिलाएं आती हैं, जो वहाँ से सटे जौनपुर जिला है, कुछ वहाँ की महिलाएं आ जाती हैं। और उसके अलावा है कि भाई कि जहाँ की महिलाएं इकट्ठी इच्छुक रहती हैं, हम लोगों जैसे कि जो जिला विभाग है आपका ब्लॉक का, वहाँ तो महिलाओं की डिमांड भी आता है कि भाई कि हमारे यहाँ की महिलाओं को जरूरत है ढंग से, तो हम लोग महिलाओं को चाहे पहले अवेयरनेस कर लेते हैं वहाँ पर जा करके, अवेयरनेस जो महिलाएं इच्छुक होते हैं उनको फिर अलग से हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं कि हम उसमें सबको ट्रेनिंग दे, किसी की इच्छा है किसी की नहीं, और जागरूकता कार्यक्रम करने के बाद हम छाटते हैं कौन महिला किस चीज का इंटरेस्ट है उनका, जो है उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्लान करते हैं। और सिर्फ ट्रेनिंग

0: है उनका जो है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्लान करते हैं। और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, ट्रेनिंग के साथ साथ तो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सके, कैसे उनका सामान बिके, वहां तक हम पूरा सपोर्ट करते उस फील्ड से।
1: तो बहुत अच्छा आप लोगन काम करत हैं। अच्छा, केहू अगर ऋण ले ले ले हा और ऋण ले करके अपन उद्योग शुरू कर चाह था आप लोगन
0: जी
1: से
0: बिल्कुल
1: ट्रेनिंग
0: बिल्कुल।
1: लेके, तो ओके का दिखावे के होला पहले अपन बिजनेस की पहले पैसा मिल जाएला, फिर
0: नहीं
1: ओके बाद शुरू
0: उसके
1: कर।
0: लिए है कि जो भारत सरकार सर्टिफिकेट मिलता है उस आधार पर मैं प्रशिक्षण ले चुके हैं, भारत
1: हाँ
0: सरकार का जो
1: हाँ
0: सर्टिफिकेट मिलता है उसके साथ साथ, तो जो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग हम लोग का होता है भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड रहता है, जिससे वो जो होता है कि फ्राडगिरी करना वो सब चीज कहीं नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोग उनको बताते हैं कि जैसे किसी को 50,000 की जरूरत है तो 50,000 में किस हेड में हमको किस किस में कितना पैसा, जैसे कोई दुकान कर रहा है तो मशीन में कितना पैसा लगेगा, हमारे बिजली में कितना खपत आएगा, और छोटा छोटा अमाउंट बना करके उसमें अलग अलग हम लोग उनको बताते हैं कैसे, जिससे प्रोजेक्ट बनता है उस हिसाब से हमको उनको टेंड करके उस हिसाब से पैसा डिवाइड करके उस हिसाब से उनको पैसा देते हैं।
1: मतलब पैसा आप लोगन दी है, फिर ओकरे बाद सर्वे करके देखी है कि मतलब उन लोगन काम करत हुन कि नहीं।
0: जी उनका सपोर्ट जो क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही है वो सब भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं उस फील्ड।
1: अच्छा, ये प्रशिक्षण जौन दिहल जाला ये कितना दिन के अंदर पूरा हो जाएला, एकर कुछ?
0: प्रशिक्षण छोटा शॉर्ट टर्म भी है, जैसे कोई प्रशिक्षण 15 दिन का भी है, कोई प्रशिक्षण 1 महीने का है, कोई 3 महीने का है, मैक्सिमम 6 महीने, 3 महीने 6 महीने तक का प्रशिक्षण हम देखते हैं ताकि उनको फुल ट्रेंड कर दे, उसके बाद ट्रेनिंग लेने वाले उनको कहीं किसी के दिक्कत न पड़ने पाए। और उसके साथ साथ हम लोग फॉलो अप भी करते हैं कि सीखने बाद महिलाएं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सब पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं उसे उसमें।
1: अच्छा, मान ली कि अगर केहू शुरू कर देलस भाई प्रशिक्षण लेके, लेकिन ओकर अगर बिजनेस बहुत बढ़िया से व्यापार नहीं चल
0: जी
1: पाए उद्योग, आ वो अगर किस्त नहीं जमा कर
0: जी
1: पावत
0: जी
1: है, तब ओकरे बदे कुछो उपाय हो?
0: नहीं उसके लिए उनको समय दिया जाता है, इसको क्या दिक्कत आ रहा है भाई, व्यवसाय कोई भी है वो मेहनत और समझदारी के हिसाब से चलता है, उसमें क्या दिक्कत आ रहा है, दिक्कत दूर करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि भाई अगर मार्केट की समस्या आ रही है तो हम लोग मार्केट देते हैं, जो गवर्नमेंट का जगह जगह स्टॉल होता है उसमें हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन भी सपोर्ट करते हैं, उसमें इस ढंग से हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने काम शुरू किए और सक्सेस हो जाए उसमें।
1: अच्छा, कुछ लोग व्यक्तिगत करल चाहेलन, कुछ लोगों जैसे स्वयं सहायता समूह से
0: जी
1: जुड़ल चाहेलन,
0: जी
1: तो वो स्वयं सहायता समूह के बारे में कुछ बहनी लोगन के बताएं।
0: नहीं दोनों ऑप्शन में हम लोग के भाई समूह अगर तो करना चाह रहा है, समूह में भी लोग महिलाएं करती भी हैं और व्यक्तिगत भी करती हैं। समूह में एक फायदा ही रहता है कि किसी महिला के ऊपर एक बोझ नहीं रहता, महिलाएं आपस में डिसाइड कर लेती कौन महिला अकाउंट काम देखेंगी, कौन महिला मार्केट काम देखेंगी, कौन महिला बनाएंगी, उस हिसाब से उनको एक बल हो जाता, ताकत का बल हो जाता और उसमें वो आराम से कर भी लेती हैं। उसमें सरकार के छूट भी, जैसे कोई मशीनरी उनको चाहिए उसमें तो उस मशीनरी में उनको अगर 1 लाख की मशीन है 1-1,000 10 महिला दे रही हैं तो बाकी 90,000 गवर्नमेंट इसमें मिलाकर देती है, वो मशीन दे देती है ताकि
1: अच्छा।
0: अपना कार्यक्रम शुरू कर सके फिर।
1: मैंने फिर वो लोगन अपन एक जगह निर्धारित
0: जी
1: करके
0: जी
1: अपन स्वयं सहायता समूह के माध्यम
0: मदद
1: से
0: करें।
1: एकजुट
0: जी
1: होके कर सकेली,
0: जी
1: ये तो बहुत नीक जानकारी देत हुआ। और जो उन बहनी लोगन अपने पैर पर खड़ा होल चाहते हैं उनके बदे तो ये बहुत अच्छा अवसर के तरह से
0: जी
1: है।
0: जी
1: अच्छा, पहले के जौन गवई में महिला लोगन रहलिन और आज के समय में
0: जी
1: आपके ये योजना चालू भइले के बाद से कुछ अंतर दिखाई देत है?
0: नहीं बहुत अंतर है, बहुत महिलाएं वास्तव में इतना खुश होती हैं कि भाई कि जहां हमको घर से बाहर डेढ़ बार निकल नहीं पाते थे, आज हम घर से बाहर निकल करके और 2 पैसा खुद आत्मनिर्भर रहे हैं, अपने परिवार का सपोर्ट भी कर रहे हैं, इससे अंदर वो तो उनको देखने से खुशी झलकती है कि भाई वो किस हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं फिर जी।
1: आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देत हुवन ये सब विषय में, और बहनी लोगन के आगे प्रेरणा बदे कुछ आप कहल चाहत हुवन उन लोगन से?
0: बस उनके अंदर एक जज्बा होना चाहिए भाई हम कर सकते हैं, करना है तो भाई करेंगे तब भी लोग कहेंगे, नहीं करेंगे तब लोग कहेंगे, उनको है कि भाई एक कान सुने दूसरे कान से निकाल दे, जब हम घर ठान लिए कुछ करना है वो करके कुछ दिखा देना चाहिए ताकि जो आज बोल रहे हैं कल को उनकी बोली बंद हो जाए, ताकि उनके अंदर उत्साह बढ़ जाए, उनका देखे देखे और महिलाएं भी उस काम को आगे बढ़ा सकते।
1: बहुत अच्छी बात आप बतौले ना, और हमहू ये बात मानीला कि भाई आपन जोन पैसा होला वो बहुत बड़ी ताकत होला, और उसे जोन बहनी लोगन में आत्मविश्वास आई ना ओकर कोनो पूछे का बात नहीं है जवाब। हाँ,
0: बिल्कुल
1: तब बहनी लोगन आगे आवे और स्वरोजगार से जुड़ करके अपन विकास करें। अजय कुमार सिंह जी, आप अइलन हमरे कार्यक्रम में और बहनी लोगन के रोजगार बदे इतना नीक नीक महत्वपूर्ण बात बतौलन, जानकारी देलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बड़ा बतकही ध्यान सुनत रहलू है
1: भाई, इतना नीक नीक का जानकारी एमे देलन है ना अजय कुमार भैया और शिखा श्रीवास्तव बहनी। तो बहनी लोगन भी एक सुनले होइन कि इन लोगन के लिए कितना नीक का बतकही रहल है। अब इमरती दीदी,
0: हाँ,
1: हम तो कहत है कि अब
0: एक गीत और बढ़िया से सुना
1: एकदम एकदम मन का बात एकदम जान जाए लू
0: हाँ, तो सुना।

0: का हो गुंजा, गीत तबला निकल लगा, लेकिन कही ना कि अब घड़ी भी हम लोग के इशारा करत हो कि बहन लोगन से विदा लोग चाहिए, तावा चल जाए। नमस्ते,
1: नमस्ते।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं तूफानी चौबे और साथियों के स्वर में गाए लोक गीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे गंगा गीत और अब आइए सुनते हैं खेमटा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं तूफानी चौबे और साथियों के गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे खेमटा, और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इनका गाया पूर्वी गीत।

0: है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त की।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के

0: रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध

0: सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाने तराने।

सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं वो सुहाने तराने जो आज भी कालजयी हैं, जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जिनसे हमारी अभिव्यक्तियां जुड़ी हुई हैं, और साथ ही सुनते हैं उन गीतों से जुड़े दिलचस्प और अनकही बातें। तो चलिए, सुहाने तराने के इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई से। दोस्तों, 1959 में आई विजय भट्ट की ये फिल्म गूंज उठी शहनाई, जिसका संगीत बसंत देसाई ने दिया था, एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी उस दौर की। उसमें एक गीत था दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये अकेला गीत है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम अपनी

हैं सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय के साथ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दूसरे गीत के बारे में बताते हैं। इस कार्यक्रम का दूसरा गीत हमने लिया है फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से। साहेब बीबी और गुलाम का अमर गीत पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। इस गीत को अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज दी थी गीता दत्त ने। संगीतकार थे हेमंत कुमार और गीत के शब्द लिखे थे शकील बदायूनी ने। इन तीनों की जुगलबंदी ने इस गीत को सदाबहार बना दिया था। संगीत के दृष्टि से देखें तो ये गीत राग मदमात सारंग की मिठास लिए हुए शुरू होता है और बीच बीच में मेघ मल्लार के रंग भी सुनाई देते हैं। इसकी लय खेमटा ताल पर आधारित है और जो गीत को एक अलग ही आकर्षण प्रदान करती है। इस गीत में सरोद, सितार, सारंगी, तबला, घुंघरू और बंगाल के पारंपरिक खोल जैसे वाद्य यंत्रों का सुंदर प्रयोग किया गया है। फिल्म में ये गीत मीना कुमारी पर फिल्माया गया था, जिन्होंने छोटी बहू के किरदार को अपनी अदाकारी से अमर कर दिया। उनकी आंखों की उदासी, प्रेम और इंतजार की भावनाएं इस गीत के हर शब्द को जीवंत कर देती हैं। ये फिल्म प्रसिद्ध बंगाली लेखक बिमल मित्रा के उपन्यास पर आधारित थी और इसके निर्माता थे गुरुदत्त। फिल्म उस दौर के बदलते हुए समाज, रिश्तों और भावनाओं की मार्मिक कहानी कहती है और यही वजह है कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे आज भी सुनने वालों के दिलों में उसी ताजगी और एहसास के साथ बसता है जैसे पहली बार सुना गया हो। तो आइए सुहाने तराने में सुनते हैं ये कालजयी नगमा और खो जाते हैं उस सुनहरे दौर की मधुर यादों में।

दोस्तों, भारतीय संगीत और सिनेमा के इतिहास में कुछ गीत ऐसे हैं जो समय की सीमाओं को पार कर सीधे हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा ही अमर गीत है जो हमें बरबस वृंदावन की गलियों में ले जाता है, जहां नटखट नंदलाल अपनी चंचल अदाओं से गोपियों को छेड़ रहे हैं और पूरा वातावरण प्रेम, भक्ति और उल्लास से सराबोर है। शास्त्रीय संगीत की मिठास, कथक की गरिमा और कृष्ण भक्ति के रंगों से सजा ये गीत आज भी उतना ही ताजा और मनमोहक लगता है जितना अपने समय में था। जब लता मंगेशकर की मधुर आवाज में ये रचना गूंजती है तो लगता है मानो स्वयं ब्रज की रस भरी फिजाएं हमारे आसपास उतर आई। तो चलिए, सुहाने तराने कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं वृंदावन की गलियों में। फिल्म मुगले आजम का वो काल जाएगी जो हर पीढ़ी के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए है। मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे। ये गीत सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। इस अमर रचना को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने, जबकि इसके भावपूर्ण बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। अपनी मधुर आवाज से इसे अमर बनाया लता मंगेशकर ने। दादरा शैली में रचा गया ये गीत राग मिश्र पीलू की मिठास लिए हुए है। इसमें उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां के सितार और पंडित पन्ना लाल घोष की बांसुरी का अद्भुत संगम सुनाई देता है जो गीत को दिव्यता और माधुर्य से भर देता है। फिल्म में इस गीत का नृत्य निर्देशन प्रसिद्ध कथक आचार्य लच्छू महाराज ने किया था। राजमहल के भव्य परिवेश में राधा कृष्ण की लीला को जिस सौंदर्य और गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है वो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस गीत की जड़ें भी बेहद रोचक हैं। माना जाता है कि इसकी मूल बंदिश 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों से प्रचलित थी। बाद में इसके शब्दों और धुनों ने अलग अलग रूपों में यात्रा की और अंततः मुगले आजम में अमर हो गई। इसकी प्रस्तुति पर लखनऊ घराने की कथक परंपरा की गहरी छाप दिखाई देती है। आज दशकों बाद भी जब ये गीत बजता है तो ऐसा लगता है मानो वृंदावन की गलियों में कान्हा की शरारतें और गोपियों की मुस्कानें फिर से जीवंत हो उठी हैं। तो आइए सुहाने तराने में सुनते हैं ये अनुपम गीत।

सन 1964 में भगवती चरण वर्मा की उपन्यास पर आधारित चित्रलेखा फिल्म की बात कर रही हूँ। इस फिल्म के सभी गीत किसी न किसी राग पर आधारित हैं। इस फिल्म के गीतों को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया था रोशन साहब ने। इस फिल्म का एक गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, मन रे तू काहे न धीरे धरे। इस गीत के लिखे हर एक शब्द जीवन के संपूर्ण दर्शन को बताता है। और आपको बता दूं श्रोताओं कि ये गीत राग यमन कल्याण पर आधारित है और इसमें ताल कहरवा की विलंबित लय का प्रयोग किया गया है। इस लय को कायम रखा मोहम्मद रफी ने और बहुत ही सुंदर ढंग से इसे गाया।

पिछली सदी के 50 के दशक के उत्तरार्ध में जब भारतीय समाज में युवा अंग्रेजी गानों से प्रेरित होने लगे थे, रॉक एंड रोल की तरफ जाने लगे थे, तब उन्हें शिक्षित करने के लिए वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई सन 1955 में, झनक झनक पायल बाजी। ये फिल्म पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अवधारणा पर आधारित थी। उसमें नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में एक गीत रचा नैन सो नैन नाही मिलाओ, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया था वसंत देसाई ने और इस गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। ये गीत राग मालगुंजी पर आधारित है जिसमें राग बागेश्री और राग रागेश्री दोनों की छाया दिखती है।

इसी गीत के साथ सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे कुछ और सुहाने तरानों के साथ और उनसे जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाने तराने। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DRM 1233 किलो हर्ट्स, DTH मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 चेहर मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं बुंदेली गीत। कलाकार हैं राजेश तिवारी।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बुंदेली गीत। कलाकार हैं राजेश तिवारी।

राजेश तिवारी के गाए इस गीत के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युवावाणी।

0: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
1: और दोस्तों, जब जिंदगी में हौसले मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसानी से हल हो जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा हिम्मत और हौसला बनाए रखिए।
0: इसी के साथ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आलिया
1: और मैं हूँ आपकी युवा साथी शिवानी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: शिवानी, क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन है?
6: हाँ, स्मार्टफोन भी है और मैं भी स्मार्ट हूँ।
5: ओ
6: क्यों, देख के नहीं लगता?
5: मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ।
6: ये तो तुमने मेरे मुंह पे मेरी ही, छोड़ो तुमसे पूछना ही बेकार था। आगे बताओ।
5: तुम्हें पता है हम सभी लोगों के पास खैर अभी तो स्मार्टफोन है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कई चीजों से अनजान रह जाते हैं।
6: ये बात तो तुमने सही कही, मेरे पास भी स्मार्टफोन है बट उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं यूज ही नहीं करती, या मुझे उस फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है, या बहुत सी और भी चीजें। ये बात तो सही है।
5: ये तो पता है हम सभी को समझना चाहिए, और दोस्तों आपको भी, कि हमारा जो फोन है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या नॉलेज के लिए नहीं है, इससे हमें स्किल भी मिल सकता है और रोजगार भी।
6: ये तो है। जब भी हम फोन लेकर बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि रील्स या शॉर्ट्स देख लें या फिर कोई ड्रामा, जबकि हमें तो फोन

0: अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तुम ही देखो ना, इंटरनेट, स्मार्टफोन, एआई और डिजिटल सेवाओं ने लोगों के जीवन, शिक्षा, रोजगार, व्यापार के कितने तरीकों को बदल दिया है।
0: और हमारे देश में डिजिटल तकनीक का विस्तार सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है आलिया। इसका उद्देश्य से भारत में डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई।
1: बिल्कुल दोस्तों, डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
0: इस पहल के अंतर्गत दोस्तों सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना है तथा नागरिकों को डिजिटल तकनीकों के उपयोग के लिए भी सक्षम बनाना इस योजना में शामिल है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों पता है अच्छी बात क्या है कि इसकी मदद से न सिर्फ शहर बल्कि गांव भी डिजिटल होंगे। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था।
0: बिल्कुल, इसका एम लोगों में डिजिटल अवसंरचना का विकास, सभी नागरिकों तक इंटरनेट पहुंच, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, डिजिटल साक्षरता का प्रसार तथा विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।
1: अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करेंगे खुद को डिजिटली अपडेट करने की, तो हमें ना इसके चुनौतियों के लिए भी तैयार होना ही होगा।
0: बिल्कुल होना होगा।
1: जैसे हमारे पास अच्छी डिजिटल नॉलेज हो, हमें साइबर क्राइम से बचने की समझ हो, क्यों शिवानी?
0: बिल्कुल,
1: और
0: ये तो
1: साथ
0: जरूरी
1: ही
0: है।
1: हाँ और साथ में डाटा की प्राइवेसी का पूरा ध्यान हो हमें।
0: क्योंकि अभी जितना हम डिजिटल हुए हैं ना आलिया, भविष्य में उससे ज्यादा होंगे और इसकी वजह से हमें रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और आलिया, जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान की, तो क्यों ना बात कर लें उसकी, जिसकी मदद से भारत में बिजनेस का विस्तार और युवाओं के लिए नए रास्ते मिले हैं।
1: शिवानी, कहीं तो मेक इन इंडिया योजना की बात तो नहीं कर रही?
0: अरे वाह, तुम स्मार्ट हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ। दोस्तों, मेक इन इंडिया का शुभारंभ आप सभी को पता होगा कि 25 सितंबर 2014 को किया गया था और यह पहल देश के औद्योगिक विकास को गति देने और विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ हुआ था।
1: और दोस्तों, इस अभियान का जो लोगो है वो शेर का है, जो भारत की शक्ति, दृढ़ता, नवाचार और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य भारत में उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना तथा औद्योगिक विकास को गति देना है।
0: दोस्तों, ये पहल विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास पर जोर देती है। युवाओं के लिए मेक इन इंडिया विशेष महत्व रखता है क्योंकि इससे रोजगार, उद्यमिता, तकनीकी शिक्षा और नवाचार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।
1: औद्योगिक विकास और कौशल वृद्धि के माध्यम से यह पहल भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है।
0: आपको पता है, हम युवा इस क्षेत्र में शिक्षा और कौशल प्राप्त करके नए अवसर का लाभ भी उठा सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी रखिए, जानिए और इसका लाभ उठाइए।

0: तो आलिया, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो चला है आज के काव्य पाठ का। तो आज कौन है हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ अपना काव्य पाठ हमें सुना रहे हैं?
1: शिवानी, अभी बताती हूँ। आज अर्णव पांडे अपनी कुछ अच्छी कविताएं लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, आप और हम लोग मिलकर सुनते हैं हमारे युवा साथी अर्णव पांडे का ये काव्य पाठ।
2: नमस्कार आप सभी को। मैं अर्णव पांडे और आज की जो मेरी कविता है इसका शीर्षक है प्रकृति का क्रंदन। और कविता कुछ ऐसी है। मैं वन हूं मुझको मत काटो, मैं वन हूं मुझको मत काटो, मैं धरती का श्रृंगार हूं, मेरी सांसों से जीवित जग, मैं जग का आधार हूं। मेरी शाखाओं पर बैठे भौर सुनाते मधुर विहान, मेरी छाया में पलता है इस मानव का सारा प्राण। किंतु मनुज तो इतना अंधा, स्वार्थ तृषा में चूर हुआ, अपनी ही जननी की छाती छेदन करने पर क्यों तुला। नदियां रोती, पर्वत रोते, रोते हैं आकाश आज, धुएं की काली चादर में घुट जाता है समाज। सागर का उज्ज्वला मुखी है, हिमगिरी का विश्व डिगा, सागर का

और ज्वालामुखी है, हिमगिरी का विश्वास डिगा, धरती के तपते माथे पर विनाश का इतिहास लिखा। जागो मानो, अभी समय है, प्रकृति नहीं व्यापार यहाँ, यह तो युग युग से पलता जीवन का विस्तार यहाँ। यदि वन उजड़े जल सूखेंगे खेतों के प्राण, फिर किसके बल पर गाओगे विज्ञान का गौरवगान। आओ फिर संकल्प उठाए हर आंगन में वृक्ष लगाएं, निर्मल नदियां कलकल बहे, हरित धारा में भाग जगे, ऐसा हो कि आने वाला कल हम पर अभिमान करे, मानो अपने विजय के संग प्रकृति का भी सम्मान करे। नहीं चाहिए स्वर्ण महल यदि धरती का उपवन मर जाए, ऐसी प्रगति व्यर्थ है जिसमें मानव ही मानव से डर जाए। धरती माँ की रक्षा करना केवल धर्म नहीं प्राण है, पर्यावरण सुरक्षित रखना मानव का जीवन संधान है। आज की मेरी दूसरी कविता है, जिसका शीर्षक है मैं भारत का पुत्र हूँ, और कविता कुछ ऐसी है। मैं भारत का पुत्र हूँ, मुझमें गंगा का पानी है। मैं भारत का पुत्र हूँ, मुझमें गंगा का पानी है, हिमगिरी की स्वाभिमान प्रखर रणभूमि की कहानी है। मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद जय घोषों में ढल जाती थी जब जब संकट घिर आते हैं भारत माँ बलि मांगती हैं। यह वही भूमि है जहाँ कभी तलवारें भी गाती थी, जहाँ वीरों की चिताओं पर स्वतंत्रता मुस्कुराती थी। यहाँ आजादी की ज्वाला है, यहाँ सुभाष की गर्जन से कापा साम्राज्य निराला है। हमने अंधकार से लड़कर अपना इतिहास बनाया है, हर आक्रमण की ज्वाला में सेना बनकर निखराया है। जो भारत को आंख दिखाए उसको उत्तर मिल जाएगा। सियों की इस धरती से फिर एक प्रलय बन निकल जाएगा। किंतु हमारा धर्म नहीं है निर अपराधों पर वार करें, हम तो विश्व बिंदु के हित हैं, अपना सर्वस्व निरसार करें। हम शांति के भी उपासक हैं, हम रण के भी अधिकारी हैं, जब सीमा पर संकट आए हम दुर्गा के अवतारी हैं। आओ ऐसा भारत गढ़े जिस पर युग अभिमान करे, ज्ञान शक्ति और करुणा से जो विश्व का कल्याण करे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक यह आकाश रहेगा, भारत माँ के चरणों में मेरा जीवन समर्पित रहेगा। वंदे मातरम का स्वर गूंजे हर हृदय तिरंगा धारण करे। भारत केवल देश नहीं है, यह सबका जीवन है। आज की जो मेरी तीसरी कविता है, इसका शीर्षक है मैं भारत बोल रहा हूँ, और कविता कुछ ऐसी है। मत पूछो मुझसे क्या हूँ मैं, इतिहास का उद्योष हूँ मैं, जिसकी जय ध्वनि से कापा ऐसा भारत वर्ष हूँ मैं। मैंने ही वेदों की ऋषियों से जग को पहला ज्ञान दिया, मैंने ही मानवता को करुणा का वरदान दिया। मेरे आंगन में बुद्ध खिले, नानक ने अमृत बरसाया, तुलसी ने मर्यादा गाई, कबीर ने सत्य जगाया। पर जब जब पाप बढ़ जग में, मैं वृज प्रहार बन जाता हूँ, शांति दूत कहलाता हूँ पर रण में अंगार भी बन जाता हूँ। हल्दी घाटी की माटी पूछो, पानीपत का मैदान पढ़ो, जिस धरती ने वीर गड़े हो इस धरती का सम्मान पढ़ो। भगत सिंह की सासों में इंकलाब का गान बसा, यहाँ अशफाक के सीने में भारत का अरमान बसा। यहाँ चंद्रशेखर की गोली ने दास्तों का अभिमान तोड़ा, यहाँ सुभाष की हुंकार ने साम्राज्यों का सिंहासन तोड़ा। यह केवल भूखंड नहीं है,

यह ऋषियों का तप त्याग है। यह केवल भूखंड नहीं है, यह ऋषियों का तप त्याग है। यह सैनिक की अंतिम इच्छा माँ के आंचल का अनुराग है। जब सीमा पर संकट आता हिमालय भी तलवार बने, जब सीमा पर संकट आता हिमालय भी तलवार बने। मृथुल की हर रेत यहाँ दुश्मन पर ललकार बने। हम शांति

राष्ट्र तुम्हें आवाज दे रहा, उठो युवाओं समय पुकारो, राष्ट्र तुम्हें आवाज दे रहा, अपना श्रम साहस और ज्ञान से भारत नो आकाश गढ़ रहा। तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, यह बलिदान का मान है, इसके हर रंग में बहता वीरों का पवन प्राण है। आज की मेरी जो चौथी कविता है इसका शीर्षक है प्राणायाम, और कविता कुछ ऐसी है। सांसों की इस पावन वीड़ा पर जीवन का संगीत बसा है, सांसों की इस पावन वीड़ा पर जीवन का संगीत बसा है, हर धड़कन के पीछे जैसे ईश्वर का आशीष छिपा है। जब जब मन का नभ धूमिल हो, जब आशाएं थक जाती हैं, प्राणायाम की शीतल सरित अंतर मन में गंगा बन जाती है। यह केवल सांसों का क्रम नहीं है, यह चेतन का अभिनंदन है, यह तन की सीमा से ऊपर आत्मा का अनुबंधन है। पूरक में नव प्रभात उतरता, पूरक में नव प्रभात उतरता, कुमकुम में संकल्प पले, रेचक के संग विचार बहे, बस मन निर्मल हो भाव धुले। जब नदियों में प्रकाश जगे, जब नदियों में प्रकाश जगे, जब चेतन में विस्तार बहे, तब लगता है जैसे भीतर 100 सूर्य का सार रहे। ऋषियों की तपती कुटिया से जो अमृत ज्ञान निकल आया, ऋषियों की तपती कुटिया से जो अमृत ज्ञान निकल आया, मनुज ने उसे प्राणायाम कह अपनाया, मनुज ने उसे प्राणायाम कह अपनाया। यह रोगों से लड़ने वाला निर्भयता का उद्योष भी है, यह रोगों से लड़ने वाला निर्भयता का उद्योष भी है, यह जीवन की भाग दौड़ में मन का मधुर संतोष भी है। जब क्रोध अग्नि बन जल जाता हो, जब क्रोध अग्नि बन जल जाता हो, जब मन का तम घर आता हो, प्राणायाम का दीपक बनकर अंतर आलोकित हो जाता हो, सांसों को यदि साध लिया तो संसार स्वयं ही सध जाएगा, अपने भीतर बैठे ईश्वर का एक दिवस दर्शन पाएगा। आओ मिलकर प्रण ले हम, तन मन को स्वस्थ बनाए, हर प्रभात की प्रथम किरण संग प्राणायाम का दीप जलाए, सांस सांस में शक्ति जगाए, सांस सांस में ज्ञान भरे, जीवन के इस महायज्ञ में अमृत जैसे प्राण धरे। आज की जो मेरी पांचवी कविता है इसका शीर्षक है योग, और कविता कुछ ऐसी है। उठो मनुज फिर समय पुकारे, जागो अपनी पहचान लिए, जिस धरती ने विश्व सजाया योग का अमृत दान दिए। जब जब जग ने राह गवाई, जब जब जग ने राह गवाई, जब जग मन संतपों में था, भारत ने तब दीप जलाया, योग इसी आलोक का था। यह केवल तन का व्यायाम नहीं, यह केवल तन का व्यायाम नहीं, ना केवल कुछ आसन है, यह तो मानव को मानव से जोड़ने वाला बंधन है। जब ऋषियों की तप त्याग भूमि का शाश्वत दिव्य विधान है, जब ऋषियों की तप त्याग शाश्वत दिव्य विधान है, योग मात्र अभ्यास नहीं जीवन का विज्ञान है। जहां सांसों में शांति बहे, जहां मन निर्मल जल गाए, जहां मन निर्मल जल गाए, जहां अहंकार स्वयं झुक जाए, आत्मा परमात्मा बन जाए। जब पद्मासन में बैठे मनुज अपने भीतर उतारता है, जब बाहर का कोलाहल भी मानो स्वयं ही जल जाता है, जब प्राणों की गीत स्वयं गुनगुनाती हो, जब चेतन का विस्तार बढ़े, तब लगता है जैसे भीतर सूरज 100 100 बार गड़े। योग हमें यह ज्ञान सिखाता, क्रोध नहीं करुणा चुनना, अंधकार में युद्ध न करना, दीपक बन स्वयं चलना। जाति धर्म की दीवार से ऊपर उठने का पथ योग, सारे जग को एक मानने वाला पावन रथ योग। नभ की सीमा जहां समाप्त हो, वहां से इसकी यात्रा है, योग किसी एक देश का नहीं, संपूर्ण विश्व की धारा है। आज धारा के कोने कोने योग का वंदन होता है, भारत का यह प्राचीन तप विश्व का संपदन होता है। आओ हम संकल्प उठाएं, तन स्वस्थ और मन उज्जवलित हो, हर योग में सूरज, हर आंगन में मंगल हो।
प्रभातों।

0: की पहली किरणों जब धरती पर श्रृंगार करे, हम योग की ज्योति जलाकर जीवन को सरोकार करें। भारत की इस अमर धरोहर को विश्व शिखर तक ले जाना है, योग दिवस के इस अवसर पर नवयुग का दीप जलाना है। योग रहे तो रोग हटेगा, मन में मानव उत्सव रहेगा, जब तक भारत जीवित होगा योग सदा प्रभावित होगा। जब योग जय जय कार का नारा लगे, जय भारत का ज्ञान रहे, हर सांस में शांति बहे, हर हृदय में कल्याण रहे।
1: अर्णव पांडे का ये काव्य पाठ तो दोस्तों के लिए अच्छा रहा आलिया, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और जानकारी अपने दोस्तों से साझा करें, उससे पहले कल के सवाल का सही जवाब देकर जितने भी हमारे दोस्त विजेता बने हैं उनका नाम अपने श्रोताओं से साझा कर लिया जाए।
2: बिल्कुल सही कह रही हो। आगे की जानकारी देने से पहले विनर्स का नाम ही बता देते हैं। तो दोस्तों, हमारा कल का यानी 1 जून का आपसे पूछा गया सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इस सवाल का सही जवाब है IPS अधिकारी राजीव कृष्ण।
1: और जिन्होंने ये सही जवाब दिया है उनके नाम हैं साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल रुक्मिनी बघेल साहिल भारती बघेल लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, रवि मौर सिमरौल आजमगढ़ से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। इसी के साथ और भी विजेता हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा, ब्रिजेश दुर्गेश नागनपुरे वन्ना भावना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़े जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं ये, और अमित कुमार गुप्ता बस्ती से हैं।
2: दोस्तों, आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, हमारे सवालों का सही जवाब देते रहिए और अपना नाम विजेता के रूप में सुनते रहिए।
1: और आज का सवाल सुनने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए और फिलहाल आनंद उठाइए इस गीत का।

0: अब दोस्तों देखिए, कार्यक्रम में तो हमें समय की सीमा का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसीलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों को शब्दों का ज्ञान देना जरूरी है ना।
1: बिल्कुल, तो चलो फिर आज के यूथ डायरी के शब्दों से दोस्तों को रूबरू कराते हैं। दोस्तों, आज का हमारा नया शब्द जो है हम आपको बताने वाले हैं, वो है अभिरुचि, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का किसी विशेष विषय, कार्य या गतिविधि के प्रति प्राकृतिक झुकाव, रुचि या सहज क्षमता। ये जन्मजात या अर्जित क्षमता होती है दोस्तों, जो किसी व्यक्ति को विशेष कौशल सीखने का, किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। और अब अगर बात इस शब्द का वाक्य प्रयोग की करें, तो कह सकते हैं कि रोहन को पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन खेलने में भी अभिरुचि है।
0: और इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं आज का हमारा इंग्लिश वर्ड जो है ब्रस्क। इसकी स्पेलिंग है BRUSQUE। इसका हिंदी में अर्थ होता है अशिष्ट। और अगर बात करें इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की, तो मैं इसे सेंटेंस में कुछ यूं यूज़ करूँगी। द वेटर्स ब्रस्क मैनर मेड मी फील अनवेलकम। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपने हमारे आज के शब्दों अभिरुचि और ब्रस्क को नोट ज़रूर किया होगा, क्योंकि ये शब्द आपको काम आ सकते हैं। और बातें तो बहुत सी हैं आपसे करने के लिए और कर भी रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हम आपको बताने वाले हैं हमारी आकाशवाणी के बारे में।
1: बिल्कुल दोस्तों, हमारे अपने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी की लगभग 9 दशकों की यात्रा पूरी हो रही है। वर्ष 1923 में बॉम्बे से एक निजी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी।
0: फिर 8 जून 1936 को जब इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला, तब किसी ने सोचा नहीं था

0: की आवाज़ पूरे देश की पहचान बन जाएगी। 1947 में स्वतंत्रता के समय आकाशवाणी के पास केवल 6 केंद्र थे, लेकिन आज ये 500 से भी अधिक केंद्रों के साथ भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका है। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं, बल्कि भारत को जोड़ने वाली आवाज है।
1: 90 साल की इस यात्रा में आकाशवाणी ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए डिजिटल इंडिया की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। मोबाइल ऐप, इंटरनेट, रेडियो और पॉडकास्ट के जरिए यह नई पीढ़ी से जुड़ रहा है, और ये हम युवाओं का ही भी कर्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाते रहें और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं।
0: अच्छा वैसे शिवानी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे इतिहास में भी बहुत कुछ बताने और कहने को है?
1: बिल्कुल कहने को है, तभी तो हम अपनी आकाशवाणी की बातें कर रहे थे।
0: बिल्कुल,
1: और कुछ कहने को नहीं, बहुत कुछ कहने को है। हमारा इतिहास बहुत कुछ कहता है। हम भूतकाल में जाकर जानकारी इकट्ठा करें तो बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें आज काम आ सकती हैं।
0: हाँ शिवानी, तभी तो वो जानकारी हम अपने दोस्तों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं।
1: जैसे कि आज भी लाए हैं इतिहास में आज के दिन की जानकारी।
0: बिल्कुल, तो चलो बताना शुरू करते हैं इतिहास में आज के दिन क्या हुआ था इसके बारे में।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों
1: बताओ।
0: दोस्तों वर्ष 1999 में भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई थी।
1: इसी के साथ आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों कि वर्ष 2000 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनास ट्रिवन टावर्स दर्शकों के लिए खुला था।
0: और दोस्तों वर्ष 2004 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी थी। और दोस्तों ये तो बातें थी बीते हुए इतिहास में, इतिहास की, जो आज के दिन यानी 2 जून को हुआ था। अब कुछ खास बातें कर ले आज के करियर के।
1: बिल्कुल, क्योंकि करियर बहुत जरूरी है और अब समय हो गया है आज की रोजगार सूचना को जानने का। दोस्तों ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की तरफ से आई हुई है, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट ALP पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 11,127 पदों के लिए की जा रही है। RRB आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 1 जुलाई 2026 तक 30 वर्ष है।
1: बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेंड में ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और फिलहाल विजिट करिए आज के QOTD की ओर। तो दोस्तों आइए, तैयार हो जाइए हमारे आज के QOTD के लिए, क्योंकि अब वक्त है आपसे हमारा सवाल करने का।
0: दोस्तों आज का हमारा सवाल है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं?
1: तो फटाफट से जाइए हमारे Insta ID youthAIR वाराणसी पर और अपना जवाब हमें वहां भेज दीजिए, या फिर आप हमें अपना जवाब मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी मेल आईडी है youthAIRVNS@gmail.com। तो जल्दी से जाइए, क्योंकि कल विनर्स बनना है ना, अपना नाम भी तो आपको हमारे उससे सुनना है रेडियो से, तो जाइए और अपना जवाब दीजिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कई ऐसी जानकारियां दी आपको जिससे भारत तो बढ़ेगा ही, पर साथ में आपकी भी ग्रोथ होगी, आप भी बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। और अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में।
1: ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। भारत में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई। यह पहल युवाओं को नए विचारों के आधार पर व्यवसाय स्थापित करने और उन्हें विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित है।
0: दोस्तों स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा नए उद्यमों के विकास के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: रोजगार सृजन, तकनीकी प्रगति और नवाचार को प्रोत्साहित करने के कारण यह योजना भारत के उद्यमशील भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है दोस्तों। तो इस पर ध्यान दीजिए, जानकारी लीजिए और अपने आप को उस जानकारी में अपडेट रखिए। और
0: बिल्कुल
1: हमारी

0: बातों के साथ अब हम आज आपसे विदा लेंगे, क्योंकि अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। आज आप सुन रहे थे शिवानी।
1: और आलिया को
0: आपसे फिर मुलाकात होगी युवाणी की किसी अंक में। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा साथी भी सुन रहे थे अपने प्रोग्राम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय आवर्जन आ विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कई देले हो। एमे आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के तहत पंजीकरण का समय सीमा अपील प्रक्रिया में कई गो महत्वपूर्ण बदलाव कैल गैल बा। यह संशोधन के अंतर्गत भारत अइले के बादे 180 दिन पूरा भइले से पहले कब्बो पंजीकरण करावल जा सकेला। ऐसे पहले 180 दिन का समय पूरा भइले के 14 दिन के भीतर पंजीकरण करावल जरूरी रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जिला में 424 करोड़ रुपया से बेसी के लागत वाली कई गो विकास परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैलें। यह मौका पर वहां के कहने की प्रदेश सरकार सेवा सुरक्षा आ सुशासन के संकल्प के साथे हर नागरिक के अधिकारन के सुनिश्चित करे बदे लगातार कार्य कर रही हो। श्री योगी कहने की यही सत्र में कुशीनगर का कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संचालनों होखे जा रहल बा।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: श्री योगी अजुए गोरखपुर में चिलुआ ताल के पर्यटन विकास से जुड़ल कई गो निर्माण कार्य का लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हो रहल हम हैं। उत्तर प्रदेश आतंक रोधी दस्ता UPATS पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ल रहले के आरोप में आजमगढ़ से एगो मनई के गिरफ्तार कैले हो। एगो रिपोर्ट।
2: खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का उत्तर पुस्तिकन में पावल गैल त्रुटियन के सत्यापन आ ओकरे फिर से मूल्यांकन बदे पोर्टल आज से शुरू हो गैल बा। ई पोर्टल 6 जून ले खुलल रही। एगो रिपोर्ट।
3: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या

0: नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पछिला 12 बरिस में उल्लेखनीय बदलाव आयल हो। महिला सशक्तिकरण के दिशा में भइल कोशिशन के लेके प्रस्तुत बा एगो खास रिपोर्ट।
2: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग प्रदेश में आज हुआ बिहने कहीं कहीं बरखा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में कृषि यंत्रों की देखभाल कैसे विषय पर विनोद कुमार सिंह और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा तूफानी चौबे और साथियों का गाया लोकगीत। 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे अनूप जलोटा। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, कल यानी 3 जून 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मूंगफली की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हार्निया कारण लक्षण और बचाव विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम प्रकाश। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनिएगा अमरनाथ मिश्रा का सितार वादन। रात्रि 10:30 पर विष्णु प्रसन्ना व साथियों के काशानाई वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी मोनिका मिश्रा और रात 8 बजे आप सुन सकते हैं पलाश चंद्र विश्वास की कई गजलें। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय, इस विषय पर कल्पना आनंद की वार्ता के अलावा लीजिएगा सेहत ज्ञान, गृहलक्ष्मी टिप्स और सुनिएगा गीत संगीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में बेल वाली सब्जियां विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार।

0: दुबे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा तेज बहादुर सिंह यादव और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों के प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मन का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार संजीव दर्शन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं शान और कैलाश खेर की आवाज़ में फिल्म फना से। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार जतिन ललित।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: सम्प्रेषयिष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरबरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारं अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 सञ्जाता। अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मन्त्री राष्ट्रपति च मारियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तिकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरबरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् UPI इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूप

0: जनस्य विद्युत तरंग चमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधार रूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् 18.1% सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: मंचो राम राम, राम।
1: सत्तू भैया।
0: हाँ नंदू भैया,
1: देखा हो मौसम तो अपन रह रह के करवट बदलत।
0: बिल्कुल भाई, अपन दौ कन कहल जाओ कि भाई रंग बदलत रहत है, कबो एकदम गर्मी करत हैं तो कबो मौसम के तनी ठंडा करके या बरसात भी करा देत हूँ
1: भैया। वो अब लगत हो न कि पानी का आगम हो।
0: एकदम पानी का आगम हो भैया। और ही जान लो न कि अब धीरे धीरे हमनी के का करे को ही न कि अपनी जोन जल संरक्षण है, जल संरक्षण से हमार कहे का मतलब ये है कि जोन अपने यहाँ खेती बाड़ी होत है, जहाँ असिंचित दशा में अपन खेती है, तो ओकरी बदे भी जल संरक्षण करे के है। और संगे संगे अगर उ जल संरक्षण हुई ना तो भाई जोन हमनी का रोज की जीवन में जल का कहल जाओ कि उपयोगिता है
1: भैया। हो कहलो गल है कि जल ही जीवन हो, तो भाई जाहिर सी बात हो कि जीवन तो है ही हो, चाहे खेत खरिहान बदे देखल जाए, चाहे मनई लोगन बदे देखल जाए,
0: चाहे हमनी
1: सबके जरूरत
0: बिल्कुल है। और अपने आई वनस्पति पेड़ पौधा बदे खेती बाड़ी बदे सब बदे एकर बहुत बड़ा उपयोग है और कहल जाओ कि बहुत जरूरी है। हमने की सांस इतना, हमने की हवा पानी इतना भाई, हवा जैसे कहल जाला ना, कहल गई ना कि का कोनो कहावती आवे कहत रहला तने खाली कहिए
1: भैया। कहल हो कि देखा रहीम रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो ये जान लग कि अपनी पानी के बचावे का। और सबसे बड़ बात ये है ना नंदू भैया कि देखा ये जो अपन पानी है एकर भाई रोज की जीवन में अपनी काम है, चाहे वो अपनी शरीर से या अपने जीवन शैली से कहल जा। और सबसे ढेर तो भाई अपने जीवन शैली से अगर एक देखल जा तो भाई ये पानी का हमनी के शरीर के हर अंग में और हर जगह जरूरत है। और संगे संगे ये जान लेना कि कुछ हमनी का ऐसा काम कर देते हैं अपन मनुष्य मानुष कि वो का होता कि जल में प्रदूषण भी होता
1: है। भाई देखा बिहाने उठले के बाद से लेके राती के सुते के समय तक भैया हो पानी पानी पानी हर जगह जोन है, मनई बदे जरूरी है। आ हो का कि पानी भी कैसन होए के चाहिए सत्तू भैया, वो साफ होए के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: आ देखे में आवेला कि भाई शरीर देखा यही में पानी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, आ ये धरतियों पे देखल जाए तो पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन पिए लायक पानी भैया बड़ा कम है,
0: बहुत कम।
1: तो एक चीज ही ध्यान रखे के हुई कि हमन के अपने पानी के जोन है साफ सुथरा रखे के हुई। अगर अपने शरीर के स्वस्थ रखे के हो, खास तौर से अगर कहल जाए, तो भैया साफ है पानी का जोन है उपयोग पिए बदे करे के हुई।
0: बिल्कुल, और इतने नहीं नंदू भैया, ये जान लग कि जोन हमने को उपयोग वाली बात कैला है ना, पानी का जोन उपयोग करत है तो भाई देखा उसमें कुछ करे के ना है। कहल जाओ कि थोड़ा थोड़ा जो सावधानी रखे के है अपने कहल जाओ कि जीवन में, वो भाई अगर तू पानी पिए जात हो तो भाई ओके छन्नी से या साफ कपड़ा से छान ल, अगर मटका में या घर की कोनो बर्तन में रख ले हो पिए बदे पानी तो ओके हमेशा ढक के रख। अपन अगर जो टंकी छत पर लगेले हम लोग तो अगर वो टंकी में गंदगी थोड़ा हो गई है तो ओके हमेशा समय समय से साफ सुथरा करत रह।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल भैया, साफ सुथरा आ जागरूकता एकरे बदे बहुत जरूरी है। ओकरे बदे हमहन के देखा पशुपालक भाई लोगन के ध्यान रखे कि भाई जिसे गाय गुरु के कहीं भी जोन है नदी में या कहीं ले जाके पानी के स्थान पे नहवा देथन ई ना करे के होई। उनके बढ़िया से भाई घरे व्यवस्था करके मलमल के उंजे नहवा दे। आ साथे भैया जोन लोग देखल जाए तो कपड़ा वगैरह जोन साफ करत हो तो ऊकर भी देखल जाए तो साबुन का झाग वगैरह वो चल जात बा अंदर। आ सीवर का जोन पानी बा उ नाली नाला जोन बनल बा उहू के लोग वही में धीरे से बहा देत बाड़ा, तो
1: अरे
0: ई कुल चीज से बचे के पड़ी।
1: नंदू भैया, कई कई लोग उनका तो हम गांवे गिरावे में देखले हैं ना। अच्छा है, अपने शहरियों में देखला कि जहाँ उनका बोरिंग है, जहाँ से पानी आवत है, वो पानी वही जा गिरत है और वही जा जमत है, और वो जम के ये जानला कि जितना अपन जहाँ से पिए वाला पानी का सोता है वहाँ वो
0: वही चल
1: पानी
0: जाता।
1: गंदगी का जात है। ये जानला कि ये हमनी बदे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमनी का जो गंदा पानी है फिर वह
0: वो
1: पानी
0: है
1: आवत है
0: पीवा।
1: हमनी के, फिर वह शरीर में जात है। अभी ये सोच ल कि ये 100 प्रकार का बीमारी लेके
0: ये
1: आवत है।
0: भैया हो देखा एक चीज ये हो कि पानी जोन है साफ रखल अपने ही हाथ में हो।
1: बिल्कुल
0: अगर हैंडपम्प का पानी है तो देखा जहाँ से गड़ल है हैंडपम्प ओकरे आसपास सीमेंट से भैया कुल मोखदा हर जगह कुल मुक्का बंद रहे, पानी के सोता में जोन है ई बह के न चल जाए रिस के नीचे, तो एकर ध्यान देवे के होई। ओकरे साथे जैसे बतौला के घरे में भी अगर जोन पानी इस्तेमाल हो तो ओके साफ सुथरा रखे के, तो ये कुल चीज़ का ध्यान देवे के होई भैया। अपने जोन पिए लायक पानी बा ओके साफ सुथरा करे के होई, प्रदूषण से बचावे के होई। ओकरे बदे भैया सबसे जरूरी बा जागरूकता आ साफ सफाई, तो अगर ई
1: बिल्कुल
0: रखे तो खुदे जो ना हर चीज साफ सुथरा रही, पानी भी अपन साफ सुथरा रहे, ओके प्रदूषण ना
1: और
0: होई।
1: एक और चीज़ का हम नंदू भैया
0: भैया कहा।
1: कि हमनी के देखा है जो किसान बनाई और हमेशा अपने यहाँ जो वैज्ञानिक भैया लोग आवे ना, चाहे हमनु का समय समय से जानकारी बात पर बतियावत रहनी जा आपस में कि जितना रसायन का प्रयोग करत हैं जा, देखो वो रसायन भी हमनी के कहीं ना कहीं जल के प्रदूषित करत
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल भैया, अगर कुल बह के जाइबा करी तो अगर पानी के सोता में गल तो रसायन पहुंचल और नुकसानिये करी, तो ये
1: बिल्कुल
0: कुल चीज सबसे बड़ी चीज हो कि भैया जागरूकता जरूरी है, ध्यान दा हर चीज का साफ सफाई जरूरी है, ऐसे ही पानी का भी जरूरी है। अपने पंचायती में सत्तू भी और बत कही कल जाई, लेकिन है जो संदेश है ना एक अपने पंच लोग के सुनवावल जाए।
1: सुनवा दो।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: नंदू भैया देखा, ये जानकारी का संदेश तो हो गई और आवा चलल जा अपनी खेती किसानी की ओर। तो आज न जोन बत कही हमनी का अपनी पंचो भैया लोन मतलब ले आएल है जाना, वो भाई कृषि यंत्रन का देखभाल कैसे करे के है। विनोद कुमार सिंह से बतीले हुआ सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, आवाज सुनल जा, भैया उनके भी सुनावल जा।
5: विनोद कुमार सिंह जी, आप कृषि वैज्ञानिक रहल हुआ अभियांत्रिकी में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जोन हमन का खेती बाड़ी बा पहले जैसन पारंपरिक तरह नहीं, हर बैल वाली
0: जी
5: खेती में हर स्तर पर देखल जाए कि जोताई बोआई कटाई दवाई सब में लेकर के जोन हो नई नई तकनीकी का प्रयोग नए नए यंत्र का प्रयोग हुआ लगल हो, तो ये प्रयोग किसान भैया लोग रखत भी हों अपने पास
0: बिल्कुल
5: है
0: सही
5: ना
0: चीज है,
5: ये सब यंत्र कि ज़्यादा उत्पादन हो सके।
0: बिल्कुल सही।
5: बाकी तक कबो कबो देखा में आवला कि सही जानकारी न भइले से या पर्याप्त रूप से ओकर देख रेख न भइले से उमन तरह तरह का समस्या भी आवेले,
0: हाँ समस्या
5: तो
0: होती
5: ये
0: है।
5: कृषि यंत्र जोन हुआ इनकर देखभाल कैसे करे के चाहिए, एक विषय में जानकारी दें हमारे किसान भैया लोगन के।
6: बिल्कुल उत्तम प्रश्न आपका है। देखिए, कृषि यंत्र एवं मशीनरी अपेक्षाकृत एक महंगा निवेश होता है, इनका प्रयोग इसलिए उचित ढंग से रख रखाव विशेष

0: सावधानी पूर्वक करने से पूर्णतया लाभ विश्वसनीय एवं व्यवधानहीन दीर्घ काल तक निरंतर इससे सेवा प्राप्त की जा सकती है
1: जी।
0: प्रत्येक यंत्र मशीनरी का जो है रखरखाव भंडारण में कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
1: कौन बिंदु हो?
0: और उसमें जैसे कि बुआई से पूर्व उसको अगर

0: उसको अगर पक्का या टीन शेड या छप्पर के अंदर या विशेष परिस्थिति में त्रिपाल वगैरह से भी रखते हैं, तो किस प्रकार से बुआई से पूर्व उसको जो है क्या कर लें कि ताकि वो मशीन जब कार्य करने जाए तो सही ढंग से कार्य करे समय से। तो वैसे में उसको बुआई से पूर्व सभी नट बोल्ट जो है कार्य करने से पहले उसको अपने स्थान पर ठीक से कस दें, और उसमें अगर चेन बेल्ट है तो उसको भी उसमें तनाव युक्त हो जिसमें कि अच्छा कार्य वो चल करके कर सक सके है। और जिसमें उसमें धार वाले जो हैं अवयव होते हैं, जैसे उसमें शेयर है, सावेल है यानी फाल है, डिस्क है, ये सब बिल्कुल शार्प तेज हों
1: अच्छा
0: ताकि वो खेत में जब काम करने जाए तो सही ढंग से कट कर सके, कार्य कर सके। सभी अवयवों का उसमें जो भाग हैं आपस में सामंजस्य ठीक हो ताकि उसमें उसका जो है सही ढंग से एक दूसरे से मिले हों, तभी वो चल पाएगा, वो कार्य कर पाएगा। और उसमें जो मूविंग पार्ट्स है, जो घूमने वाले हैं, जिसमें कि बियरिंग वगैरह मूविंग पार्ट्स में है, उसमें पर्याप्त मात्रा में उचित ढंग से तेल ग्रीसिंग कर दिया जाता है
1: जी, हम
0: ताकि
1: एक
0: वो
1: बात
0: सही ढंग
1: आपसे
0: से
1: ये
0: कार्य
1: जानना
0: करें।
1: चाहब कि ये जो नाप बतावत हुए विधि विधान एकर देख रेख करे कर, तो प्रयोग कैले के बाद एक कह के रखे के चाहिए कि जब हमें प्रयोग करे के जरूरत हो वो समय कैल जाए।
0: नहीं, प्रयोग करने के बाद जो होता है, प्रयोग करने के बाद अगर प्रयोग में नहीं है तो प्रयोग करने के बाद इस मशीन को जब कार्य करने के बाद ले आए तो उसमें पहला काम है कि अच्छी प्रकार से उसकी सफाई कर दें, अगर धुलाई की जरूरत है तो धुलाई कर दें, और जो भी उसमें नट बोल्ट अवयव इस प्रकार के भाग हैं उसको सही ढंग से यथास्थान कस दें, और उसमें बियरिंग बूस जो है उसमें ग्रीसिंग और आयलिंग कर दें, तेल लगा दें ताकि उसकी लाइफ सुरक्षित हो जाए और जरूरत पर सही ढंग से काम कर दे।
1: प्रयोग कइले के बाद ही घर काम कर दियो मन।
0: और प्रयोग करने के बाद ये जरूरी होती है साफ सफाई और सुखा करके और इस प्रकार से उसमें कर दें, और प्रयोग में नहीं है और उसको रखना है यंत्रशाला में, तो उसमें जो जैसे प्लास्टिक की नली है, ट्यूब है, फैन बेल्ट वगैरह है, इसको जो है निकाल करके अलग से खूंटी पर टांग दें ताकि वो अपना समुचित ढंग से समय पर उसका फिर लाभ उठा सकें और लगा करके कार्य कर दें। लगा नहीं छोड़ना चाहिए।
1: अच्छा, निकाल देवे के पहले।
0: रबड़ और टायर लगे वाले जो भाग होते हैं उसमें उसको बिल्कुल मिट्टी से, अगर नीचे फर्श है जो उस पर नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा ईंट का फर्श बना हो उस पर रखें या लकड़ी की सहायता से भूम से थोड़ा सा उठा करके रखें, और मशीन में कार्य करने के पश्चात जब सुखा कर रखते हैं यंत्रशाला में तो उसमें जंग प्रतिरोधी पेंट लगा दें, अगर वो ना मिले तो जला हुआ मोबिल ऑयल वगैरह लगा करके सुरक्षित रख दें, इससे जंग लगने का जो डर रहता है वो समाप्त हो जाता है, और मशीन जो आयरन जो भाग होता है वो सुरक्षित हमेशा लॉन्ग लाइफ तक बना रहता है। इस प्रकार से अगर मशीन का अगर देखभाल करेंगे तो वो दीर्घ काल तक लंबे समय तक बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य बढ़िया अच्छे प्रकार से सुनिश्चित करेगा, और जिससे कि उसकी जब उम्र बढ़ जाएगी तो अब खर्चा भी कम लगेगा और कम पैसे में जो एक बार खरीद लिया है अपना कार्य उत्तम करेगा, उससे फिर किसान भाई को जो है फसल उत्पादन में लाभ ही मिलेगा।
1: ये जो बात बतौना है आप रख रखाव वाली, तो प्रयोग करत के समय जौन हो का करे कि चाहे, जैसे कबू कबू होला बुआई वाले यंत्र के बात चलत हो तो मन होला कि कबू दाना जौन हो कम गिरत हो कबू ज़्यादा गिरत हो, तो ऐसे स्थिति में का करे के चाहिए।
0: बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि मेन बुआई होती है, अगर सही ढंग से बुआई नहीं हो पाएगा
1: जी
0: तो फिर फसल की जमाव उचित ढंग से नहीं होगा तो फिर उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा,
1: जी
0: तो इसलिए क्योंकि महंगा निवेश खाद बीज होता है, समय से उनको बुआई करके उपज लेना है, किसान भाई को अपनी इनकम बढ़ाना है, तो किसी भी मशीन से जैसे सीड ड्रिल हुआ या जीरो टिल मशीन हुआ, तो इससे बुआई से पूर्व खेत में ले जाने से पहले सर्वप्रथम उनका अंशांकन करना अति आवश्यक होता है, जो कैलिब्रेशन बोलते हैं, जिसमें इसका अंशांकन का मतलब होता है कि निर्धारित मात्रा में बीज और उर्वरक की निकासी हो
1: अच्छा,
0: एज पर रिकमेंडेशन ऑफ साइंटिस्ट, जो है जितना बताया जाता है कि कितने केजी प्रति हेक्टेयर।

0: बुआई दर लगेगा तो उसी हिसाब से फर्टिलाइजर दर लगेगा तो उसी हिसाब से अंशांकन करना चाहिए। अंशांकन जो है 15-20 मिनट का होता है, खेत में ले जाने से पहले समतल जगह पर उस मशीन को खड़ा कर करके और उसको थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उसको टेक लगा करके उठा देते हैं, और आगे बुआई वाले मशीन के आगे जो ट्रैक्टर ड्रान पावर ड्रान होता है, एक बीच में पावर पहिया होता है जिसका अटैचमेंट मशीन से होता है,
1: जी
0: तो पावर पहिया पर एक निशान लगा करके कोई भी तागा कपड़ा बांध करके एक औसत गति से पूरा खेत में चलने की गति के अनुरूप एक कंप्लीट चक्कर कर कर ला के उसी स्थान पर रोक दें,
1: जी
0: तो बीज वाले बॉक्स में जो होल होता है जिससे कि बीज नीचे गिरता है ट्यूब से, तो नीचे ट्यूब में एक नीचे फरो ओपनर से जो फाल है उसमें से निकाल देते हैं, उसमें पोलथीन बांध देते हैं और एक चक्कर पावर पहिया के चलाने में देखते हैं कि एक थैली में ट्यूब से कितने दाना अनाज गिरा है। तो
1: अच्छा
0: हर फसल का हर बीज का अलग अलग मानक होता है कि एक चक्कर में अगर समय से अगर रबी में गेहूं की बुवाई करेंगे धान की करेंगे अनाज वाली फसलें जो होती हैं जौ धान गेहूं है तो 55 से 58 दाना गिरना चाहिए, वो मात्र 5 मिनट में गिन करके और मशीन को सुरक्षित समझ के खेत में बुवाई कर सकते हैं। अगर चना और मटर की बुवाई करना है तो पावर पहिया के एक चक्कर में 24 से 28 दाना एक थैली में एक ट्यूब से गिरना चाहिए,
1: अच्छा
0: समय से बुवाई करेंगे। अगर देर से करते हैं तो 5 दाना बढ़ा करके उसमें काउंट करना गिनना चाहिए है।
1: अच्छा
0: अगर आयली तेल वाली अगर फसल की बीज की बुवाई करना है तो समय से करना है तो 70 से 72 दाना होना चाहिए एक थैली में एक ट्यूब से पावर पहिया के एक चक्कर लगाने में।
1: अच्छा
0: अगर अरहर मक्का बोना हो बड़े दाना का अनाज बोना हो तो पावर पहिया के एक चक्कर में 7 से 8 दाना होना चाहिए। देर से करेंगे 2-3 दाना की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। देर का मतलब होता है कि देर से बुआई करने पर फिर उपयुक्त टेम्परेचर जमाव के लिए जर्मिनेशन के लिए नहीं उपयुक्त होता है, इसीलिए जो है दानों की संख्या बढ़ा देते हैं कि कुछ दाना संख्या अधिक रहेगा तो जमाव थोड़ा सही ढंग से काउंट कर लिया
1: जी
0: जाएगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस प्रकार से हर अनाजों का दलहन का तिलहन का अलग अलग प्रकार से मानक होता है। मात्र 10-15 मिनट में अंशांकन खेत से पहले समतल स्थान पर करना आवश्यक होता है ताकि मशीन निर्धारित मात्रा में बीज की निकासी कर रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो खेत में ले जाकर के बुवाई करें, अगर नहीं कर रही है तो सीड ड्रिल में या जीरो टिल में एक सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है बॉक्स के नीचे बीज मापक प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसमें एक पार्ट लोहे का होता है लीवर जैसा, उसको बाएं और दाहिने लेफ्ट एंड राइट करके और जिसमें से बीज नीचे ट्यूब में गिरता है उसके छिद्र का होल का आकार जो है ऊपर से बॉक्स के बीज जो गिरता है होल से उसके समतल जो है बड़ा छोटा करने की आवश्यकता होती है। अगर कम गिर रहा है तो होल की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज्यादा गिर रहा है तो होल का साइज कम करना पड़ेगा ताकि जितना अनाज कम गिरेगा उसी हिसाब से नीचे जितना जरूरत है बुआई होगा।
1: मैंने हिसाब से नियंत्रित कैसे करना।
0: इसीलिए अंशांकन बहुत ही जरूरी है मशीन का कि बुआई से पहले मेरी मशीन परफेक्ट है कि नहीं है, सही
1: जी जी
0: कार्य कर
1: जी
0: रही है कि नहीं कर रही है।
1: एकरे बाद बात आवेले जो सिंचाई का संयंत्र हमार हुआ या जो दवा छिड़काव हम लोग करी ला,
0: बिल्कुल सही।
1: तो उम्मन कौन कौन रख रखाव करे छे।
0: अब देखिए अगर जैसे दवा छिड़काव है प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, ये खेतों में जो है यूरिया वगैरह या जो घुलनशील रूप में नाइट्रोजन बढ़ने के लिए दिया जाता है इसका घोल बना करके छिड़काव करते हैं, कीड़े मकोड़ों के मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का घोल के रूप में प्रयोग कर छिड़काव करते हैं स्प्रेयर से, और खरपतवार को मारने के लिए खत्म करने के लिए जो है हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की कमी की आपूर्ति के लिए, पौधों के पोषक तत्व में कमी होती है तो उसमें रोग पैदा हो जाते हैं, अच्छा उपज नहीं होता, फसल अच्छी है तो इसका छिड़काव करते हैं। अगर इसमें एक तो पहला ये है मेरा कहना है किसान भाइयों को कि दवा सही हो, उस पर जो उसके साथ पुस्तिका मिलती है कागज मिलता है उस पर जो निर्देशिका दिया रहता है उसके अनुरूप दवा का उचित मात्रा में प्रयोग के लिए जानकारी कर लें या अच्छे वैज्ञानिक से संपर्क कर लें। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पानी की मात्रा, छिड़काव में पानी का सबसे अहम रोल होता है।
1: जी,
0: करीब 95% जो है 98

0: 100% पानी का रोल होता है। अगर पानी उचित मात्रा में नहीं मिलाया गया है दवा में तो फिर छिड़काव का कोई बहुत गलत असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए पानी बहुत कम मिलाए हैं घोल जो दवा मिला करके टंकी में या छिड़काव कर रहे हैं, तो दवा जो है बहुत अधिक मिला देने से दवा जो है वो फसल जलने लगती है।
1: जी जी
0: और दवा बहुत कम मिला करके घोल बना के छिड़काव करते हैं तो फायदा ज़्यादा नहीं करेगा।
1: जी जी
0: इसीलिए उचित मात्रा में हर दवा के लिए एरिया के अनुसार प्रति हेक्टेयर की दर से पानी की मात्रा की जानकारी बहुत समुचित ढंग से होना किसान भाइयों को आवश्यक है, ताकि अच्छी प्रकार से छिड़काव करें और लाभ उठाएं।
1: जी जी मशीन में कैसे देख रेख होकर करें, क्योंकि
0: मशीन
1: नजर
0: में यह है कि
1: हो,
0: अगर वो मान लीजिए कि अगर वो छिड़काव में उसका सख जाली जो है अगर नहीं कांप असमान छिड़काव कर रहा है या कभी कभी बंद हो जाता है तो उसकी जाली जो दवा खींचती है वो चोक हो जाए तो उसको मशीन रोक करके जाली को साफ कर लें, क्लियर कर लें, ताकि वो सही ढंग से दवा को खींचे और छिड़काव अच्छा हो। नाजिल में जो स्प्रे करता है खेतों में फसलों पर पौधों पर, वो नाजिल अगर चोक हो गई हो तब भी असमान छिड़काव होगा, क्योंकि उसी से फव्वारा बनता है। तो मशीन रोक करके नाजिल को खोल करके साफ कर लें और उसका छिद्र जो है क्लियर कर दें, ताकि बराबर फव्वारा के रूप में छिड़काव करें। और छिड़काव का सबसे बड़ा एक चीज है, किसान भाइयों को बता दें कि करीब करीब ज्यादा किसान भाइयों को नहीं मालूम है, वो भ्रम में रहते हैं कि जहां रोग लगता है ज्यादा तो वहां ज्यादा छिड़काव करते हैं,
1: जी
0: जहां कम लगता है वहां कम असमान छिड़काव करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, दवा दवा होता है, किसी रोग के लिए उसका एक उचित मात्रा हो, न कम न ज्यादा, एक औसत गति से चल के खेत में एक और एक समान ऊंचाई पर रख करके, न बहुत ऊपर न नीचे, एक बराबर मात्रा में एक समान छिड़काव करेंगे तो दवा का असर सभी पौधों पर होगा या छिड़काव का असर सभी पौधों पर होगा और फसल की जो भी कमियां हैं रोग वगैरह लगे हैं कीड़े मकोड़े वो सब मर जाएंगे और पोषक तत्व की आपूर्ति हो जाएगी, बढ़वार विकास अच्छा होगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी होगी, लिहाजा उपज में काफ़ी इजाफा वृद्धि होगा, किसान भाइयों को लाभ मिलेगा।
1: अच्छा, जो सिंचाई संयंत्र हो,
0: हाँ,
1: एमन का देख रेख करने की जरूरत पड़े ले किसी
0: सिंचाई के लिए, जैसे सिंचाई के लिए तो एक स्प्रिंकलर होता है, फव्वारा सिंचाई प्रणाली बोलते हैं, दूसरा टपक सिंचाई प्रणाली बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो मेरा यह सुझाव है किसान भाइयों को कि जो फव्वारा सिंचाई होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सेट होता है, उससे सभी प्रकार के अनाजों अनाज वाली फसलों पर सिंचाई के लिए फव्वारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जितने दलहन है तिलहन है इसमें तो बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें समान रूप से कारगर सिंचाई के लिए फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रयोग होता है, पहले जानकारी होना आवश्यक है। और टपक सिंचाई प्रणाली जो होती है, जिसे बूंद बूंद करके घुलनशील उर्वरक 50% बचत करते हुए और पानी का अच्छा घोल बना करके पानी और उर्वरक कम से कम पानी में और जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जितने प्रकार की सब्जियां हैं फलदार पौधे हैं और आलू है बैंगन है टमाटर मिर्चा है इत्यादि और पेड़ पौधे बड़े हों या छोटे हों उस पर ये जो है टपक सिंचाई प्रणाली का लेआउट कर करके और उस पर छोटे छोटे ड्रिपर होते हैं 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर औसत पानी प्रति घंटा निकासी का दर होता है, जिस प्रकार का पौध है उसी प्रकार से ड्रिपर लगा देते हैं, बूंद बूंद करके घुलनशील उर्वरक 50% बचत करते हुए पानी रिसता रहता है और जो है पौधों को सुलभ होता है, इस प्रकार से बड़ा अधिक कारगर होता है। इसमें अगर पहले तो यह है कि इसका तरीका जान लें कि लेआउट करना है कि स्प्रिंकलर में फव्वारा में मेन पाइप मुख जाती है, उससे लेटरल पाइप जाती है, लेटरल से सब लेटरल शाखा पाइप जाती है, हर दो पाइप के बाद ही दो पाइप जोड़ने के बाद 75 mm 90 mm का तब एक स्टैंड में स्प्रिंगदार नाजिल लगाते हैं जो 40 फीट व्यास में गोलाई के रूप में, नाजिल एकदम सूखा हो साफ सुथरा हो छिद्र उसका खुला हुआ हो। और सबसे बड़ी चीज है कि पानी का प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का दबाव, बिना दबाव के तो फव्वारा निकलेगा नहीं उचित ढंग से।
1: जी जी।
0: तो इसमें 0.50 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पानी का दबाव होगा तो अच्छा फव्वारा के रूप में 40 फीट व्यास में घूम घूम करके सिंचाई का कार्य जब चाहेंगे तब सेट को लगा करके कर सकते हैं।
1: तो भैया

0: विनोद कुमार सिंह जी, आप पे इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के कि कृषि यंत्रन का प्रयोग एकर देखभाल कैसे करें जैसे कि उनका उत्पादन बढ़िया मिले, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सत्तू भैया,
2: हाँ भैया।
1: देखा हो अपने खेती किसानी में जौन जौन औजार यंत्र कुल का इस्तेमाल होला, ओकर देखभाल कौने तरीके से कल जाए, ए विषय पे कितना बढ़िया ये बत कही रहा है विनोद कुमार सिंह से, सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया का। आ अब जौन है ना अपने पंचायती में हो जाए मन मनसान भैया।
2: बिल्कुल भाई, मन मनसान हो जाओ तो तूफानी चौबे और साथी लोन का ना ये विकास गीत आवाज सुनल जाओ और भैया लोन के
1: हाँ
2: सुनावल जाए।
1: सुन सुन।

देखा तूफानी चौबे आ उनके साथी लोगन का ई गवनई हो गल सत्तू भैया। अब जो है अपने पंच लोगन के काल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देवल जाए तो देखा बिहाने

0: बज के 5 मिनट पर होई खेती का बात। एमा भाई मूंगफली का जोन है खेती कैसे कैल जाए एकर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: और संध्या के अपने यही कार्यक्रम कृषि जगत में जो उनकी 6:30 पर होला, एमए हुई बेल वाली सब्जियन का खेती, और डॉक्टर राकेश कुमार दुबे से बतियले हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया। तो देखा भैया यो बहुत नगद का
0: होगल
1: जानकारी है, भैया लोग
0: आप कुल
1: सुनिया।
0: बतकही भी होगल, कुल जानकारी भी होगल पंच लोगन के, अपने चलेगा बेला भी होगल, तो चलत है जा पंचो
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 241.54 मीटर पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ में फिल्म आप आए बाहर आए से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार हिरन राजभर पुत्री सीताराम राजभर निवासी सोनवरसा थाना चौबेपुर वाराणसी ये 26 मार्च सन 2026 से लापता हैं। हिरन राजभर के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार से हैं। आयु 25 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट 1 इंच, ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं, रंग सांवला है, चेहरा गोल है। इनके बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। वंदना पटेल पुत्री संतोष पटेल ये ग्राम रतनपुर पोस्ट व थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी की निवासिनी हैं। वंदना पटेल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से है। आयु 19 वर्ष, लंबाई लगभग 157 सेंटीमीटर, रंग सांवला है, ये हिंदी भाषा बोल लेती हैं, चेहरा गोल है। वंदना पटेल के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में अगली सूचना हमें प्राप्त हुई है सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से। मिथिलेश पांडे पुत्र वाल्मीकि पांडे निवासी बुचवा सिद्धवलिया गोपालगंज बिहार के निवासी हैं। मिथिलेश पांडे के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार से हैं। आयु 40 वर्ष, लंबाई 160 सेंटीमीटर, रंग साफ है, ये हिंदी भोजपुरी बोल लेते हैं, ये मानसिक रूप से विकृत हैं, सफ़ेद शर्ट और नीला पैंट पहने हुए हैं। यदि आपको मिथिलेश पांडे के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बंजी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण, कहा प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला, ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन, कहा शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है।
6: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं, उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
5: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक

0: मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
1: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
3: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनू और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी। लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार

हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे

0: के बीच, तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: रसरंग कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाज में फिल्म दलाल का गीत। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म संगीत से। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म डकैत से, आवाज़ आशा भोसले और सुरेश वाडकर की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

रसरंग कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म चांदनी से। आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

0: लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222

0: 1052 बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं अनूप चलोटा।

श्रोताओं, इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं अनूप चलोटा।

अनूप जलोटा की गाय इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट

0: Empowering Farmers Through Welfare and Farmer-Centric Policies. Participants are Shekhar Iyer, Political Analyst, and S.P. Singh, Senior Journalist. The moderator is Sonu Sood.
1: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
2: Namaskar, thank you.
1: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
3: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का यह नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं।

0: होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: Yeah, you know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over at last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be Annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access and challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters, because somewhere other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, wagar.

0: वगैरह, वी डोंट हैव टू डिपेंड. एंड लास्टली आई मस्ट ऐड, द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो ब्रॉट फोकस टू नेचुरल फार्मिंग, सो
1: राइट
0: दैट द फ्यूचर इज नेचुरल फार्मिंग. वी कैन हैव केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, एंड टुवर्ड्स दैट गोल यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स बीइंग टेकन ऑफ लेट.
1: यस मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पर दो दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई. सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है. जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई.
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी. उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा. तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई. सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है. लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी. और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी. तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है. जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है. चौथा था बीज, बेहतर सीड. अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए. तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है. हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे. उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया. और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं. ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए. और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो. ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का. उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार. अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने. प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से. वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल रहा है।

0: टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
0: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। जी, सरकार ने बहुत बेहतर,
0: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what have they revised? Keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of, you know, cold storage chains in everywhere. Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there is, like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, cost by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
0: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले cooperative model की बात करी थी कि Ministry of Cooperation बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम cooperation models कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में आप हमें

0: बता सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
1: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत, आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया? तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2, 4, 5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। अब समझिए कि हमें लगता है कि 60 से 70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
0: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
1: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
0: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. The very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers, and nearly about 25 black farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, And this is a broad concept, you know, from

0: from the seed to the market, the final produce, in that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. Right. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop, more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we've had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hai. 2014 se dekhe to 37% bade hai humare agriculture exports. $51 billion ho gaye hai. Aur isme jo processed food exports hai, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hama thode bata sakte hai, jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है,

0: में 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
1: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इन्फ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि

0: किया जाएगा। और आप समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट। प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरीड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses. And the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
2: very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, Empowering Farmers Through Welfare and Farmer-Centric Policies. The participants were Shekhar Iyer, Political Analyst, and S.P. Singh, Senior Journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि

0: जॉब बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं हसरत जय पंकज उदास का गाया ये गीत। रचना ज्योति नायर की है।

पंकज उदास की आवाज़ में। अभी आप सुन रहे थे एल्बम हसरत का ये नगमा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं हैरी आनंद की आवाज में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी को वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। पेश है कार्यक्रम में गजल, कलाकार हैं गुलाम अली।

0: श्रोताओं, गैर फिल्मी गीतों गजलों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, खेल दर्पण के आज की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है। यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने

0: स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ।
1: धन्यवाद।
0: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
1: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको, और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
0: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी, आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
2: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का, वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए, हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए। उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है, तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, चूंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाला मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं, कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं, तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी

0: के लिए प्रॉपर डाइट होता है। तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए, जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है। तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है, तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है। डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे भी।
1: चलिए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलिए, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अगर कि अपने खेल के अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए, तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं, जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूँ। तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड, मतलब 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन। और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है, जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं। तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए, जिनका मेडल आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें। और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं, जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है, जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है, नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहां एक अच्छा पैसा मिलता है उनको। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपने टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है, जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक

0: माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है, वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं, नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी, एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूँ कि अगर मैं ही हूँ, तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं, वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वाच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है। अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प, इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है, जहां से उसके रुचि के हिसाब से, उसके शौक, उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है, उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिसपे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें, अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें, हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं, तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी, और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था। परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे, और हम अपने जिस स्कूल में, माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था, उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था। तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे, तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद, जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे, देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के। तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती, हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है 6वीं 7वीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं 8वीं 9वीं आया, तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग, लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे, अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी, खाली थी, वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे, उसको तैयार करके करते थे। तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी, अच्छी हो रही थी, और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे, दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर, उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको, हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए। फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए। तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ। और 1 साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद, उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ, तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है, बेसिक जो है, कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको वो किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के 2-4 लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाएं जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हों, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो। तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में मतलब

0: करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल बीर बहादुर सिंह गोरखपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इसी स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज बीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है, उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है। जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है आज के
1: विशेष
0: डेट में।
1: करके छोटे शहरों और गांवों में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले। तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
0: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फार्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फार्म गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फार्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहां से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, उस शुल्क देके आप उस फार्म को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहां से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको वो सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहां तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय
0: जी
1: और जो स्थानीय केंद्र हैं
0: जी
1: उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो
0: जी
1: प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
0: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने

0: कहा भी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक जो एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
2: ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसे नाम दिया गया है इसको, ग्रैपलिंग रेसलिंग, रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रैपलिंग की फेडरेशन होगी, उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रैपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रैपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग में, ग्रैपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रैपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रैपलिंग रेसलिंग है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रैपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई है, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रैपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म, है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना

0: होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है। खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद सर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 400,
5: मीडियम वेव 241.5 चैरमीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन, राग है जोग।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन, राग था जोग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal. Days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and